Sumita Drumada Shobhini Suhasini Sumadhura Bhavini.

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई 2026 प्रातःकाल के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ज पर प्रातःकाल के 6 बजने को है। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F

0: यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:05 हो चुके हैं। समय है आज के विचार का। सुनिए आज का विचार, भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी। जी हाँ, आज के विचार का विषय है भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी।
2: दीप नाली का एक पवित्र राष्ट्रीय पर्व है। भारत के सभी

हैं। नव वर्ष के आरंभ के रूप में भी इस पर्व को मनाया जाता है। घर घर की सफाई मंगाई कर नए खातों का आरंभ करना, पुराने हिसाब को खत्म करना इसी दिन से माना जाता है। एक प्रकार से मानव के सुखमय जीवन के लिए आज का दिन शुरुआत है। मानव अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाना चाहता है। सुखमय जीवन के लिए धन ही एक कारण नहीं है, किंतु विचार, अंतःकरण की शुद्धता, प्रेम, दया, सद्भावना ही कारण है। इन कारणों की प्राप्ति विद्या से होती है। विद्या के

धन संपदा की अधिष्ठात्री लक्ष्मी वास करने लगती हैं। ये तीनों आपस में आकांक्षा रखने वाली ही नहीं किंतु सह अस्तित्व को रखने वाली हैं। अतएव भारतीय चिंतन ने इन देवताओं की आराधना को समष्टि से प्रवर्तित किया है और यष्टि से भी प्रवर्तित किया है। भारतीय

आराधना से ही संपदाओं की प्राप्ति होती है, अर्थात सरस्वती से बुद्धि, दुर्गा परमेश्वरी से शक्ति को

0: करता हूँ। यह प्रार्थना कर अर्जित धन संपदा का सब विनियोग करता है। मानव दैवी शक्ति को प्राप्त किए बिना जितने भी प्रयत्न किया जाए वे स्थायी फलदायी नहीं होंगे।
1: आप सुन रहे थे आज का विचार। विषय था भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर प्रातःकाल के 6:10 हो रहे हैं। समय हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं इस हनुमान भजन के साथ।

सम्मान स्तुति के बाद भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में लीजिए प्रस्तुत है श्री राम भजन।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में जगजीत सिंह के स्वर में थी ये प्रस्तुति। अंतिम स्वर है नितिन मुकेश, अनुपमा देश पांडे और साथियों का।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातःकाल के 6:30 बज रहे हैं। समय है रामचरितमानस गान का। कार्यक्रम में आज सुनिए बालकांड के दोहा संख्या 283 से दोहा संख्या 240 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। स्वर है ए हरिहरन का।

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्री राम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में किसान श्रोताओं के लिए होगा कार्यक्रम खेती की बातें। मधुमक्खी पालन से आय बढ़ाएं विषय पर जानकारी देंगे श्री बजरंग सारस्वत। प्रातः 6:50 पर आप लोक भजन का आनंद ले सकेंगे। सुबह 7:00 का समय रहेगा कार्यक्रम सुप्रभात का। एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय एकता के 12 वर्ष

में सुबह 7:30 बजे ले सकेंगे। तत्पश्चात सुबह 10 बजे आप फिल्म संगीत में नई फिल्मों से गीत सुनेंगे। सुबह 11 बजे भूले बिसरे गीत फिल्म संगीत कार्यक्रम में सुनवाए जाएंगे। दिन में 12:40 का समय भी रहेगा फिल्म संगीत का, और दोपहर 2:30 बजे भी हमारी पहली सभा में आप फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे। हमारी दूसरी सभा में शाम 6:05 पर फिल्म संगीत में होंगे एक ही संगीतकार के गीत। दूसरी सभा में फिल्म संगीत का आनंद शाम 6:05 के बाद आप रात्रि 8 बजे ले सकेंगे। रात्रि 9:15 का समय भी रहेगा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का, और रात्रि 10 बजे फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का आनंद आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से उठा सकेंगे।

0: सुबह 8:30 बजे लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में है कविता पाठ, कवि होंगे श्री रमेश भोजक। सुबह 8:45 पर आप श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा सुन सकेंगे। वाचक स्वर होगा श्रीमती मधु शर्मा का, प्रस्तुति रहेगी श्री रेवंत राम लेघा की, संयोजनकर्ता होंगे श्री अमित सिंह। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक संगीत का आनंद आप उठा सकेंगे हमारी पहली सभा में सुबह 9:10 पर, और लोक संगीत कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 8:30 बजे हमारी दूसरी सभा में। सुबह 9:30 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT। आकाशवाणी जयपुर से दिन में 12:10 पर प्रसारित किया जाएगा सिंधी कार्यक्रम। दोपहर 1:05 का समय रहेगा कार्यक्रम घर आंगन का, चर्चाएं होंगी ग्रामीण महिलाओं में डिजिटल साक्षरता, थायराइड के असंतुलन से महिलाओं में समस्या, घर की इंटीरियर डिजाइनिंग, वास्तु टिप्स और बारिश के दिनों में शिशुओं के कपड़ों की सफाई और फंगल इन्फेक्शन से बचाव के तरीके। हमारी दूसरी सभा के प्रारंभ में युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। आज की बात रहेगी युवा जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका, लघु जानकारियां होंगी अल्पस पर्वत, हर रोज प्लानिंग करें कालीबंगा, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे विषयों पर। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण जगत प्रसारित किया जाएगा 7:00 बजे, चर्चाएं रहेंगी क्षारीय भूमि वाले खेतों में मृदा उपचार, मानसून में मौसमी बीमारियों से बचाव, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, गांवों में स्वरोजगार के विकल्प। सुगम संगीत का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 7:45 बजे, और रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आप गजलों का आनंद ले सकेंगे। ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातःकाल के 6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है किसान श्रोताओं के लिए कार्यक्रम खेती की बातें, मधुमक्खी पालन से आय बढ़ाएं विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री बजरंग सारस्वत।
1: किसान भैया राम राम। आज रे समय में कम लागत और घनी आमदनी वालों मधुमक्खी पालन एक कुटीर उद्योग रूप में विकसित हो रही है। ओ एक एडो व्यवसाय है जिन मायने आप स्थान माथे बैठे बैठे थोड़े खर्चे में घनो लाभ प्राप्त कर सको हो। मधुमक्खी पालन बेरोजगार युवा वास्ते रोजगार रो अच्छो साधन बन सके है। अपार देश में पुराने समय से ही मधुमक्खी पालन हो रही है। इतिहास में कई स्थान माथे शहद रे प्रयोग रो विवरण मिले है, पर आज रे समय में इरो व्यावसायिक उत्पादन मोटे पैमाने पर लियो जा रही है, और शहद रे उत्पादन रे मामले में अपर देश रो पूरे संसार में 5वो स्थान है। मधुमक्खी पालन खेती बाड़ी और बागवानी री तरह कृषि रो ही एक अंग है। मानव जाति रे आर्थिक उत्थान में मधुमक्खी व्यवसाय एक बहुत बड़ो योगदान करे है। इन काम ने सब प्रकार रा लोग अपने अच्छो लाभ प्राप्त कर सके है। कृषि रे क्षेत्र में मधुमक्खी पालन काम किसान भाया वास्ते नरी आमदनी यानी अतिरिक्त आमदनी रो एक प्रमुख भाग बन सके है। किसान बयारो कोई सबसे अच्छो मित्र कीट है तो वो मधुमक्खी है। कृषि वैज्ञानिक का एक अनुसंधान में मान्यो है कि फसला में 75% परागण री क्रिया मधुमक्खियां से हुए। इन बात फसला री पैदावार बढ़ाने सागे सागे किसान बयारी आमदनी में बढ़ोतरी हुए।

0: इन व्यवसाय से किसान भाई सैद रेसा के मोम गोंद और पराग भी प्राप्त कर सके और छोटे और सीमांत किसान भाई वास्ते आय रो एक बहुत या छो माध्यम बन सके है। मधुमक्खी पालन करण वास्ते उपयोगी उपकरण जिका चाहिए बारी बात करा तो एड़ा उपकरण है विशेष मास्क मोटो और पतलो ब्रुश डंक निकालने वाला उपकरण प्रोपोलिस स्ट्रिप हाथरा दस्ताना धुओं करने वाला यंत्र प्लास्टिक सु बनेड़ो भोजन युक्त रानी मधुमक्खी वास्ते छत्तो एल आकार छत्तो रानी मधुमक्खी ने नैरीकरण वास्ते यंत्र शहद निचोड़न वाला यंत्र और मोम न्यारो करने वाला एक विद्युत चाकू। स्थान रो चयन करती थे मापा ने बहुत ध्यान रखना चाहिए। मधुमक्खी पालन सारू एड़ा स्थान रो चयन करना है जिथे नमी नहीं हुए जिया के कोई नदी तालाब नेरिया एड़ा माध्यम नहीं हुए चारों कानी सुखुलो हवादार छायादार सुखो स्थान आप चयन करो जिकरे आसे पासे मोकड़ा पेड़ पौधा होवे। शहद देवनाली मधुमक्खी की प्रजातियां मोकड़ी है बामे है शुद्र मधुमक्खी एपिस फ्लोरा एपिस डोर्सेला हिमालयन मधुमक्खी यूरोपियन मधुमक्खी सारंग और जंगली मधुमक्खी। इरो उचित समय इर वास्ते आपा तैयारी सितंबर अक्टूबर में कर सका है और शुरुआत नवंबर में कर सका है। मधुमक्खी पालन रो सही समय सर्दी रो मौसम है। आपा संबंधित सगड़ा उपकरण और व्यवस्था पहली कर ले तो ठीक रेवे एन मौके माथे आपा व्यवस्था करा तो खर्चो डेढ़ो पड़े। तीन बात री मधुमक्खियां री आवश्यकता पड़े है एक तो रानी मधुमक्खी जिकी अंडा देवे है और नर मधुमक्खी जिका गर्भाधान करे है और श्रमिक मधुमक्खी जिका अंडा री रक्षा करने और शहद इकट्ठो करने समेत सगड़ा काम संभाले। मधुमक्खी पालन में लागत री आप बात पूछो तो जे 20 पेटिया सु मधुमक्खी पालन आप आरंभ करो तो 1,00,000 रुपया अड़े गड़े लागत आवे और जे 100 पेटिया री बात करो तो लागत 5,00,000 रुपया अड़े गड़े बैठे इधर पछे आमदनी ही आमदनी शुरू हो जावे। शुरुआती दिना में शहद उत्पादन में लागत घनी और आमदनी थोड़ी कम हो सके है क्योंकि वो काम शुरू करने वास्ते आप जका उपकरण खरीदो बारी लागत राशि थाने घनी लागे। धीरे धीरे इनमें लागत कम और मुनाफो बत्तो होने लाग जावे बाजार में शुद्ध शहद कमी मिले इन व्यापार में अच्छो लाभ कमाऊं सारू बाजार में बिना मिलावट वालो शुद्ध शहद बेच आप बहुत अच्छी आमदनी ले सको अच्छो लाभ ले सको आप रे ब्रांड रो नाम भी कमा सको। 100 बक्सा सु आप आसानी सु हर साल 5-6 लाख रुपया तक कमा सको हो। मधुमक्खी पालन सारू लोन सरकार सु राष्ट्रीयकृत बैंक सु लोन री सुविधा उपलब्ध कराई जावे है ओ व्यवसाय लघु उद्योग श्रेणी रे अंतर्गत आवे है। लोन और सब्सिडी सारू आप उद्यान विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र सु संपर्क कर सको हो। मधुमक्खी पालन सारू कोई विशेष योग्यता री जरूरत कोनी होवे कम पढ़ियो लिखियो आदमी भी ट्रेनिंग लेर ओ व्यवसाय आरंभ कर सके है। प्रशिक्षण शुल्क भी नाम मात्र हुए है कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग सु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने री सुविधा भी हुए। आ प्रशिक्षण शिविर में शहद उत्पादन सारू उचित वातावरण नुआ नुआ उपकरण और प्रबंधन री साची जानकारी और नई नई तकनीका घणो शहद देवनाली मधुमक्खिया री प्रजातियां नस्ल सुधार और रोगा सु बचन री जानकारी और वैज्ञानिक विधि सु सही प्रशिक्षण दियो जावे है। आ सब बातां ने आप ध्यान में रखकर आप रे व्यवसाय ने और भी आगे बढ़ा सको हो।
1: किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। मधुमक्खी पालन से आय बढ़ाए विषय पर जानकारी दी श्री बजरंग सारस्वत ने। प्रातःकाल के 6:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है अभय सिंह गहलोत का गाया लोक भजन।

0: आप सुन रहे थे अभय सिंह गहलोत का गाया लोक भजन। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ज पर प्रातः काल के 6:55 होने को है। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है संस्कृत में समाचार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। वियतनाम देशस्य फुक्वोक द्वीपस्य समीपे जातायाम् स्पीडबोट इत्येतस्याम् दुर्घटनायाम् दिवंगतानाम् 15 भारतीय पर्यटकानाम् पार्थिवावशेषाः स्वदेशं प्रत्यानीताः। वियतनामस्थेन भारतीय दूतावासेन सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे उक्तं यत् एते पार्थिवावशेषाः हो चि मिन्ह नगरात् वियतनाम विमानयान सेवया मुंबई नगरं अभ्युपगताः। गत शुक्रवासरे फुक्वोक द्वीपस्य समीपे 32 भारतीय पर्यटकान् 4 स्थानीय नौका कर्मचारिणश्च वहन्ती स्पीडबोट इति द्रुत नौका जले निमग्ना जाता। अस्याम दुर्घटनायाम 15 पर्यटकाः दिवंगताः। दुर्घटनायाम जीविताः 16 जनाः अपि भारतं प्रत्यागताः। एकः पर्यटकः अधुनापि वियतनाम देशे चिकित्सालये चिकित्साम् अधिगच्छति। अस्मिन् मासस्य आरम्भे पश्चिम बंगालस्य तटात् लुप्ता मत्स्यजीविनां नौका बंगालखात्यां निमग्नावस्थायां

आप सुन रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस जज्बात की, उस भावना की, जो भारत को केवल एक देश नहीं बल्कि विविधताओं से भरे एक जीवंत परिवार के रूप में जोड़ती है। जी हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारतीय एकता के 12 वर्ष, भारत जहाँ सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं, अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग खान पान हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन फिर भी हमारी पहचान एक है, हम भारतीय हैं। श्रोताओं,

भारत की यही सांस्कृतिक एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसी भावना को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य केवल राज्यों को जोड़ना नहीं बल्कि दिलों को जोड़ना है। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में जोड़ा गया ताकि लोग एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला, भोजन और परंपराओं को जान सकें, समझ सकें। बीते 12 सालों ने इस अभियान को राष्ट्रीय एकता की नई ऊर्जा दी है। जरा कल्पना करें श्रोताओं, राजस्थान का एक छात्र असम की संस्कृति सीख रहा है, वहीं केरल की छात्रा पंजाब के लोक नृत्य को समझ रही है, गुजरात का कलाकार नागालैंड के लोकप्रिय गीतों से परिचित हो रहा है। यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। जब हम एक दूसरे को जानते हैं तभी हम एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं। श्रोताओं, इस अभियान के अंतर्गत विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न संस्थानों में अनेक गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं, जैसे कि भाषाओं का सीखना, सांस्कृतिक आदान प्रदान, पारंपरिक व्यंजनों का परिचय, लोक कलाओं के प्रदर्शन, पर्यटन को बढ़ावा, युवा संवाद, साहित्य और संगीत के कार्यक्रम। इन गतिविधियों से देश का प्रत्येक नागरिक यह अनुभव करता है कि भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमें एकता और अखंडता बनाए रखने का संदेश मिलता है। श्रोताओं, एक भारत श्रेष्ठ भारत उसी संवैधानिक भावना को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। आज जब पूरी दुनिया भारत की ओर आशा और विश्वास के साथ देख रही है तब हमारी राष्ट्रीय एकता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का हर नागरिक एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करेगा और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखेगा। श्रोताओं, हमारी संस्कृति, कहना चाहिए भारतीय संस्कृति, हमें सिखलाती है वसुदेव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है। जब हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं तब अपने ही देश के हर राज्य, हर भाषा, हर संस्कृति और हर नागरिक को अपनाना हमारा नैतिक दायित्व है। आइए हम संकल्प लें कि हम भारत की प्रत्येक भाषा का सम्मान करेंगे, हर संस्कृति को अपनाएंगे, आपसी सद्भाव को बढ़ाएंगे और राष्ट्रीय एकता को और मजबूत बनाएंगे। रंग अनेक पर तिरंगा एक, भाषाएं अनेक पर भारत एक, संस्कृतियां अनेक पर पहचान एक, यही है अपना भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो श्रोताओं, ऐसा भारत क्यों ना हमें जान से प्यारा हो। भारत की एकता को समर्पित करते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, भारत एक विशाल देश है और इस विशाल देश में विविधता ही इसकी पहचान है, यही विविधताएं इसे विशेष बनाती हैं। श्रोताओं, हम भारतीय जहां अलग अलग रंगों से बने होने के बावजूद भी एक हैं, वहीं हम सबके जीवन की सबसे खास बात है कि हमारे जीवन की विविधताएं, चाहे वो खान पान से जुड़ी हैं, चाहे वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं, ये विविधताएं दरअसल हमें बांटती नहीं बल्कि आपस में जोड़ती हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन विविधताओं को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि जीवन में सबसे ज़रूरी है कि हम मजबूत हों। मजबूत सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी। जी हाँ, अगर हम जिम्मेदार नागरिक हैं तो हम जिम्मेदार मनुष्य भी हों, जिम्मेदार इंसान भी हों, ये भी ज़रूरी है, तभी हम जिम्मेदार नागरिक हो सकते हैं। और जिम्मेदार इंसान होने के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी स्वयं हमारे स्वास्थ्य के प्रति होती है। जी हाँ, स्वस्थ जीवन शैली ही स्वस्थ भारत की आधारशिला है। स्वास्थ्य मानव जीवन की सबसे अमूल्य निधि है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान दे सकता है। इसलिए कहा गया है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आज विज्ञान और तकनीक के इस युग में जीवन पहले की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक जरूर हुआ है, लेकिन व्यस्त दिनचर्या, अनियमित खानपान, शारीरिक श्रम की कमी और बढ़ते मानसिक तनाव ने अनेक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी पैदा की हैं। श्रोताओं, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग जैसी समस्याएं अब केवल वृद्धावस्था तक सीमित नहीं रह गई बल्कि युवाओं में भी ये तेजी से बढ़ रही है। ऐसी परिस्थितियों में स्वस्थ जीवन शैली अपनाना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्वस्थ जीवन शैली का पहला आधार है श्रोताओं, संतुलित एवं पौष्टिक आहार। हमारे दैनिक भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, दालें, दूध और पर्याप्त मात्रा में पानी अवश्य शामिल होना चाहिए। भोजन हमेशा समय पर और आवश्यकता के अनुसार ही किया जाना चाहिए। ज्यादा तला भुना, ज्यादा मीठा और अधिक नमक युक्त भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर हम अपने भोजन में संतुलन बनाए रखें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। स्वास्थ्य का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है श्रोताओं, नियमित और शारीरिक गतिविधि। जी हाँ, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तेज

से चलना, योगाभ्यास करना, प्राणायाम, साइकिलिंग करना या फिर कोई और भी शारीरिक व्यायाम करना शरीर को सक्रिय और सुदृढ़ बनाए रखता है। नियमित व्यायाम न केवल शरीर की कार्य क्षमता बढ़ाता है बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। योग भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य देन है। योग और ध्यान से शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित होता है। नियमित योगाभ्यास जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। श्रोताओं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि पर्याप्त नींद ली जाए। जितना संतुलित भोजन और व्यायाम जरूरी है उतनी ही पर्याप्त नींद भी आवश्यक है। श्रोताओं, सामान्यतः एक व्यक्ति को प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेनी चाहिए। पर्याप्त नींद शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करती है, स्मरण शक्ति को बेहतर बनाती है और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होती है। स्वस्थ जीवन के लिए कुछ सरल आदतें बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। श्रोताओं, जैसे कि प्रातः जल्दी उठें, दिन भर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल का सेवन करें, व्यक्तिगत और आसपास की स्वच्छता बनाए रखें, भोजन समय पर करें, मोबाइल, टेलीविजन और अन्य डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही करें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, शराब और अन्य किसी भी प्रकार के नशे से खुद को दूर रखें। आदतें न केवल इंसान के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। श्रोताओं, स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं और स्वस्थ समाज ही विकसित राष्ट्र की आधारशिला होता है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना केवल व्यक्ति का जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हमारा सामाजिक दायित्व भी है। आइए हम सभी संकल्प लें कि संतुलित भोजन करेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, पर्याप्त विश्राम करेंगे, स्वच्छता अपनाएंगे, अपने परिवार और समाज को भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का होता है निवास। स्वास्थ्य से ही जीवन में आता है उल्लास। अच्छी आदतें अपनाएं, रोगों को दूर भगाएं, स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान निभाएं। सुबह के लम्हे बहुत सकारात्मक होते हैं। श्रोताओं, ये धीरे धीरे होने वाली सुबह हमें ऊर्जा से भर देती है। इन लम्हों का हमें स्वास्थ्य के प्रति भरपूर फायदा उठाना चाहिए और मधुर संगीत के साथ स्वास्थ्य लाभ के यथासंभव प्रयास करने चाहिए। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, ये हमारा भारतवर्ष ही है जिसने हमें खुली फिजा में सांस लेने का मौका दिया है, खूब सारे अधिकार दिए हैं। ऐसे में बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हम पर नाफिज होती हैं श्रोताओं, कि हम अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठ रहें। इसी तरह से जैसे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर हम जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं, जिम्मेदारी पारिवारिक परिस्थितियों का निर्वाह कर सकते हैं, जिम्मेदारियां समाज की उठा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें नशा मुक्ति की, तो दरअसल श्रोताओं, नशा मुक्त समाज स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध भारत की ओर बढ़ाया गया कदम है। मनुष्य का जीवन ईश्वर का अनुपम उपहार है श्रोताओं। ये जीवन तभी सार्थक बनता है जब हम अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। लेकिन अगर नशा किसी इंसान की जीवन में प्रवेश करता है, तो वो केवल एक आदत नहीं रह जाता, बल्कि धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य, उसके परिवार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने लगता है। आज नशा मुक्त समाज का निर्माण केवल एक अभियान नहीं है, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है श्रोताओं। तंबाकू, धूम्रपान, शराब और अन्य मादक पदार्थ शरीर और मन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इनके लगातार सेवन से हृदय रोग, फेफड़ों के रोग, यकृत संबंधी समस्याएं, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अनेक कठिनाइयों का जोखिम बढ़ रहा है। इसके साथ ही व्यक्ति की निर्णय क्षमता, कार्यक्षमता और पारिवारिक संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, नशे की शुरुआत कई बार जिज्ञासा, मित्रों का दबाव, तनाव या क्षणिक आकर्षण से होती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पहला कदम का ही ना उठना, यानी पहले कदम पर ही रुक जाना। विशेष रूप से युवाओं के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दें। शिक्षा, खेल, योग, संस्कृति, साहित्य, कला और सामाजिक गतिविधियां जीवन को उद्देश्य देती हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। माता पिता और परिवार की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर परिवार में खुला संवाद हो, विश्वास का वातावरण हो और बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले, तो वो गलत संगति और नशे के प्रलोभन से बच सकते हैं। विद्यालय, महाविद्यालय और समाज भी जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। श्रोताओं, अगर कोई व्यक्ति नशे की समस्या से जूझ रहा है, तो उसे तिरस्कृत या उपहास का नहीं, बल्कि सहयोग और उचित उपचार का अवसर मिलना चाहिए। समय पर चिकित्सकीय सलाह, परामर्श और परिवार का सहयोग कई लोगों को नशे की लत से बाहर लाने में मदद कर सकता है। समाज का सकारात्मक व्यवहार भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। इससे उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पारिवारिक संबंधों में तनाव आ सकता है, कार्यस्थल पर भी प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। इसलिए नशे से दूरी केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि परिवार और समाज के प्रति भी एक जिम्मेदारी है। श्रोताओं, एक स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि हमारा युवा वर्ग स्वस्थ, जागरूक और नशा मुक्त हो। जब युवा अपनी क्षमता का उपयोग शिक्षा, नवाचार, खेल, विज्ञान और राष्ट्र निर्माण में करेगा, तभी देश नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम स्वयं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहेंगे, अपने परिवार और मित्रों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगे। अगर कोई व्यक्ति नशे की समस्या से जूझ रहा है, तो उसे उचित सहायता और उपचार के लिए प्रेरित करेंगे और अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएंगे जहां स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिले। सच्ची आजादी वही है श्रोताओं, जो हमें हर प्रकार की बुरी आदत और नशे की गुलामी से मुक्त रखे। नशा श्रोताओं सिर्फ एक ही प्रकार का अच्छा है, और वो है प्रेम का नशा। प्रेम का नशा हमें सकारात्मकता का संचार करता है। ये प्रेम अपने प्रियजनों से हो सकता है, परिवार से हो सकता है, समाज से हो सकता है, मानवता से हो सकता है। बस सिर्फ एक इसी नशे को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, बाकी किसी नशे को नहीं। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

तो श्रोताओं, हम संकल्प लें कि भारत की विविधता ही हमारी एकता है, यही हमारी पहचान है, और भारत के प्रति स्वयं स्वस्थ रहकर और नशा मुक्त समाज का निर्माण करके हम अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को जरूर निभाएंगे। इसी संकल्प के साथ कार्यक्रम सुप्रभात से दें आज्ञा, आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

आप सुन रहे थे सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। समय है फिल्म संगीत का। लीजिए सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में कार्यक्रम का पहला गीत। गीत को लिखा है समीर ने, संजीव दर्शन का है संगीत और ये गीत है फिल्म मन से।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में अगला गीत। गीतकार हैं समीर, जतिन ललित का है संगीत।

ये आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। फिल्म थी कोयला। इंदिवर ने गीत को लिखा था, संगीत था राजेश रोशन का। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में नदीम श्रवण के संगीत से सजा अगला गीत, जिसे बोल दिए हैं समीर ने। फिल्म है हम है राही प्यार के।

0: कुमार सानू की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ जो था फिल्म सड़क से फिल्मी गीतों का ये सफ़र यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ज पर सुबह के 8 बजने को है आकाशवाणी दिल्ली से। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
4: Peacekeeping has been a crucial element of

0: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: अक्रॉस 10 ऑफ द 11 एक्टिव मिशंस।
2: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमेरिकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमेरिकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी

0: खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों, पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन

0: उनके साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद फरद। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मुज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India officially launches its campaign for election as a non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. U.S. launches strikes on Iran for the 3rd consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
2: Highlighting

मैं इमोशनल हूं। तुम्हें पता है ना, मैं इमोशनल हूं, खासकर तुम्हारी बातों से मैं कुछ ज्यादा ही हो जाता हूं इमोशनल। खैर छोड़ो, अभी करोगी बात मुझसे, कहोगी क्यों याद कर रही हो मुझे। इतनी देर से देखो हिचकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रुक जाओ ना, याद मत करो ना प्लीज, मैं हंस दूंगा तुम्हारी बातें सुनकर। क्या कहूं तुमको, पता है ना तुमको, नहीं दूंगा जवाब हमेशा की तरह इस बार भी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है हिस्सा। मैं हिस्सा बनना चाहता हूं तुम्हारे जीवन का, तुम हंसोगी दोहराओगी कि तुम अब तक भी नहीं समझे मेरे मन को। बहुत सी मजबूरियां होती है पर इन सब के बावजूद, तुम मेरे वजूद का एक अहम हिस्सा हो। मैं हिस्सा बनना चाहता हूं तुम्हारे जीवन का, तुम हंसोगी दोहराओगी कि तुम अब तक भी नहीं समझे मेरे मन को। बहुत सी मजबूरियां होती है पर इन सब के बावजूद तुम मेरे वजूद का एक अहम हिस्सा हो। तुम इत्ता सा कहकर चुप हो जाओगी, और मैं ये सब सुनकर खुद को टटोलूंगा एक बार फिर से तुम और तुम्हारी बातों को। तुम मेरे वजूद का एक अहम हिस्सा हो, तुम इत्ता सा कहकर चुप हो जाओगी और मैं ये सब सुनकर खुद को टटोलूंगा एक बार फिर से तुम और तुम्हारी बातों को मानते हुए हमेशा की तरह तुमको बंद आंखों से निहारते सो जाऊंगा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है नियति। नियति ही तो है ये और कोई विकल्प ही बचा कहां रह गया अब। पाना है तो भोगना ही पड़ेगा ना, तुम्हारे आसपास को। मैं नहीं डरता अपनी या तुम्हारी छाया से, मैं डरता नहीं भोगने से भी, पता है मुझे ये होना है, होकर ही रहेगा। हूं तैयार तुम्हारे आसपास को मात देने के लिए, मैं तैयार हूं अपने भीतर गहरे तक जमे डर को सड़क किनारे औंधे मुंह पड़े डस्टबिन को पैर से सही कर डालने के बाद। मैं हल्कापन महसूस कर रहा हूं दिमाग में, और मन में ताकत भी, अनुभूत करता तैयार हूं भोगने के लिए। मुझे पाना जो है यही नियति ही तो है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है शिकायत। मुझे मालूम है यही होता है जब रात घिर आने के बाद हम तुम अपनी बातें बंद कर सो जाते हैं गहरी नींद में। और फिर रात पूरी रात जलती कुड़ती रहती है इसी उधेड़ बुन में कि किससे करूं शिकायत इनकी। मुझे मालूम है यही होता है जब रात घिर आने के बाद हम तुम अपनी बातें बंद कर सो जाते हैं गहरी नींद में और फिर रात पूरी रात जलती कुड़ती रहती है इसी उधेड़ बुन में कि किससे करूं शिकायत इनकी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बस यही चाहता हूं। सब कुछ खूब सारा कहने सुनाने के बाद मेरी डबडबाई आंखों को महसूस कर जब तुम कहते हो लो पानी पी लो। सब कुछ खूब सारा कहने सुनाने के बाद मेरी डबडबाई

की आंखों को महसूस कर जब तुम कहते हो लो पानी पी लो, सच कहता हूं सब कुछ भुला देता हूं। सब कुछ खूब सारा कहने सुनाने के बाद मेरी डबडबाई आंखों को महसूस कर जब तुम कहते हो लो पानी पी लो, सच कहता हूं सब कुछ भुला देता हूं, सपने बुनने लगता हूं फिर से। सब कुछ भुला देता हूं, सपने बुनने लगता हूं फिर से, होले से कह भी तो देता हूं तुम पागल हो, होले से कह भी तो देता हूं तुम पागल हो। मासूम बच्ची सी तुम मुस्कुरा देती हो, मासूम बच्ची सी तुम मुस्कुरा देती हो, ये सुनकर और मैं ये देखकर नए जीवन को महसूस करने लगता हूं अपने भीतर। मासूम बच्ची सी तुम मुस्कुरा देती हो, ये सुनकर और मैं ये देखकर नए जीवन को महसूस करने लगता हूं अपने भीतर। जो तुम्हारा दिया होता है, जो तुम्हारा दिया होता है, यूं ही रहना यूं ही करना, मैं बस यही तो चाहता हूं, हां बस यही तो चाहता हूं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है एहसास। एहसास मर गया है, एहसास मर गया है, सपने की मौत हो चुकी है। एहसास मर गया है, सपने की मौत हो चुकी है, अरमानों का गला घुट चुका है। एहसास मर गया है, सपने की मौत हो चुकी है, अरमानों का गला घुट चुका है। मैं सदमे में हूं, चुप हूं मौन हूं। एहसास मर गया है, सपने की मौत हो चुकी है, अरमानों का गला घुट चुका है। मैं सदमे में हूं, चुप हूं मौन हूं, और कर भी क्या सकता हूं। मैं सदमे में हूं, चुप हूं मौन हूं, और कर भी क्या सकता हूं, सिवाय खुद को ये दिलासा देने के कि भाग्य विधाता जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। चुप हूं मौन हूं और कर भी क्या सकता हूं, सिवाय खुद को ये दिलासा देने के कि भाग्य विधाता जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। चिंता न करें, मैं संभाल लूंगा खुद को। चिंता न करें, मैं खुद संभाल लूंगा खुद को, पर उसको कैसे संभालूं। चिंता न करें, मैं संभाल लूंगा खुद को, पर उसको कैसे संभालूं जिसने इन एहसास सपने अरमान के अंश को सृजित किया है खुद में मेरे लिए। एक जमाने से कहा

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय है देशभक्ति सहजान का।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 हो रहे हैं, समय हो चला है कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा का। जी हाँ, श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम प्रस्तुत है। वाचक स्वर है श्रीमती मधु शर्मा का, प्रस्तुति है श्री रेवंत राम लेखा की, संयोजन करता है श्री अमित सिंह।

0: श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, सफर कोई भी हो, अगर उस सफर में एक सच्चा दोस्त साथ हो तो सफर सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि आनंददायी भी हो जाता है। आपको तो पता ही है कि हमारे श्रोताओं का अच्छा दोस्त आकाशवाणी है, क्योंकि ये एक ऐसा दोस्त है जो आपका मनोरंजन भी करता है और जानकारियों के भंडार को भी बढ़ाता है। चलिए अब हम आपके और आज के श्रोता के बीच में से हट जाते हैं, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि आज के मेहमान ना सिर्फ आकाशवाणी के श्रोता हैं बल्कि आकाशवाणी में विभिन्न पदों पर रहकर आकाशवाणी के कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयां भी दी है। जी हाँ, आप हैं श्री भागीरथ रेवाड़।
2: देखिए, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तब तो रेडियो घरों में जो हमारे उपलब्ध थे उसी में हम प्रोग्राम सुनते थे। जब हम पढ़ाई पूरी कर ली, मैं एक दूसरी सर्विस में लग गया था जो कृषि अनुसंधान केंद्र गंगानगर में था, तो उसमें सुपरवाइजर के पद पर मैं सर्विस करने लग गया था। तब भी रेडियो जो है मैं सुनता था, रेडियो से लगाव भी था और मेरे घर में एक पुराना रेडियो था भी, तो जिससे उपलब्धता थी तो बच्चे भी सुनते हैं जैसे परिवार में, वैसे हम भी सुनते रहते थे, तो उससे रेडियो से लगाव तो लगभग जब थोड़ी बहुत समझ आई 8वीं 10वीं में आए तब से ही लगातार इसके श्रोता रहे और बाद में धीरे धीरे आगे जो है इससे रुचि बढ़ती गई। तो रेडियो का जो एक तरह से लगाव था वो बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सभी को इतना ज्यादा था कि वो घर में रेडियो जो है वो बजता ही रहता था।
1: श्रोताओं, आपकी पहली पोस्टिंग आकाशवाणी जोधपुर

0: केंद्र पर फार्म रेडियो रिपोर्टर पद पर हुई। जब आप पहले दिन आकाशवाणी जोधपुर गए तब की यादें बताते हुए आपने कहा,
1: मुझे आकाशवाणी जोधपुर में फार्म रेडियो रिपोर्टर के पद पर नियुक्ति मिल गई थी 83 में। उसमें ज्यादातर जो स्टाफ था, देखो एकदम अपरिचित था, मुझे रेडियो में कभी गए हुए या कभी इस संस्थान को देखने का मौका पहले नहीं मिला था। तो मैं ज्वाइन करने गया, पूछते पाछते आकाशवाणी पहुंच गया। वहां बाहर वो बैठे रहते, उन्होंने पूछा पता, फिर वो कागज़ दिखाया जो नियुक्ति का होता है। तो उन्होंने कहा भाई आप तो यहाँ सर्विस में आए हो, ये है वो है। मैं चलो, उन्होंने आगे उच्च अधिकारी के पास मुझे छोड़ दिया। उनसे मैंने बात बहुत की, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बिठाया, आराम से मेरे से बात की। फार्म वारम जो थे या डॉक्यूमेंट जो थे वो वहीं बैठे बैठे उन्होंने पूरा करवाया। वो ज़्यादातर उसमें सिखाने करने का उसमें उन्होंने कई महीने तक बताया किया। एक दो के साथ लगा दिया मेरे को कि चलो तुम आप इनके साथ ये काम करते हैं, ये डबिंग एडिटिंग का तो आप देख लो। कोई रिकॉर्डिंग का होता था तो बोले इनके रिकॉर्डिंग में तुम साथ रहो, तुम्हें आइडिया होगा, पता लगेगा। इस तरह से करके वो 4-6 महीने तक लगातार, कभी लाइब्रेरी में लगा दिया कि वहाँ देखो किस तरह से काम होता है, आप रिकॉर्ड कैसे मतलब निकालते हैं, कैसे रिकॉर्ड को छांटते हैं, किस तरह से ये रिकॉर्ड मिलता है, अगर बाय द वे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो दिक्कत नहीं आएगी, ये सीखना ज़रूरी है। ऐसे करके वो सारे जो काम जो हैं वो लगभग धीरे धीरे 4-6 महीनों में उन्होंने अच्छी तरह से सिखाया।
0: श्री रेवाड़ जी जोधपुर के बाद आकाशवाणी केंद्र सूरतगढ़ में कार्यक्रम अधिशासी के पद पर नियुक्त हुए। इसके बाद आकाशवाणी बीकानेर और फिर सूरतगढ़ केंद्र से ही आप सेवानिवृत्त हुए।
1: सूरतगढ़ में मैं करीब FRR के पद और फिर कार्यक्रम अधिकारी के पद पर लगातार वहाँ 2006 तक रहा। उसके बाद में मैं 2007 से 12 तक आकाशवाणी बीकानेर में कार्यक्रम अधिकारी के पद पर मैं यहाँ आ गया था। और यहाँ 12 के बाद में मैं वापस मेरा ट्रांसफ़र एक बार फिर सूरतगढ़ जो है 12 से 17 तक मेरा वहाँ कार्यकाल रहा। वहाँ मेरा प्रमोशन भी हुआ, मैं सहायक केंद्र निदेशक हो गया और 2017 अगस्त में मेरा रिटायरमेंट हो गया था।
0: आपने अपने अनुभव और यादों में आकाशवाणी के विभिन्न विभागों का भी जिक्र किया।
1: वैसे देखा जाए तो अलग अलग पदों पर रहते हुए लगभग सारे विभाग देखे हैं, पर मेरा मूल रूप से कृषि विभाग में वो चयनित था मैं, तो ज़्यादातर मुझे चौपाल या खेतीबाड़ी के जो प्रोग्राम थे वो मुझे देखने पड़ते थे। तो ऐसे करके कोई ऐसा विभाग नहीं रहा जो मैंने मेरे कार्यकाल में नहीं देखा। जितने भी रेडियो के विशेष कार्यक्रम हैं, महिला जगत, युववाणी, आपके ये संगीत के या बच्चों वृद्धों इत्यादि के या नाटक फीचर ड्रामा के, तो वो एक अनुभव के रूप में भी काम आ जाएगा, सीखने का भी अगर इच्छा है लालसा है तो सीख भी जाएंगे। तो मेरी लालसा हमेशा सीखने की रहती थी।
0: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि यूं तो आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के कारण आकाशवाणी की लिसनिंग बढ़ती है। जैसे कि ये हमारा कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा भी स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित है, जिसके कारण आप जैसे श्रोताओं से रूबरू होने का मौका मिलता है। आकाशवाणी बीकानेर के कुछ और कार्यक्रम भी हैं जो स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित है, जैसे बीकानेर दर्पण, युवा तरंग, आकाशवाणी के संग, विकास यात्रा और कदम बढ़ाए चलो। ये सभी कार्यक्रम ओबी बेस है, जिसके लिए हम श्रोताओं के बीच में जाकर उनसे बातचीत करते हैं। श्रोताओं, ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रेवाड़ जी ने ओबी यानी स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रमों का जिक्र किया।
1: इसमें ओबी का जो कार्यक्रम था जो था उन दिनों में काफी था, क्योंकि ओबी बेस प्रोग्राम की लिस्टिंग जो कहते हैं हमारे आकाशवाणी के हिसाब से, तो ओबी बेस जितना प्रोग्राम हम बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा आपकी लिस्टिंग बढ़ेगी। जब हम ओबी पर जाते थे तो वहाँ पूरा, किसी गांव में गए तो गांव पूरा इकट्ठा हो जाएगा, मेरे शायद में घरों में कोई बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं रह जाए या बच्चे रह जाए तो मुझे पता नहीं, बाकी वहाँ इतनी भीड़ हो जाती थी कि आप पूछोगे नहीं। हमें खुली जगह में रखना पड़ता प्रोग्राम, स्कूल के किसी प्रांगण में या कोई ऐसे पेड़।

0: जो गांव में गुआड में कहीं होते थे, जिनके चारों ओर खूब आदमी इकट्ठे हो जाए, वहां हम रिकॉर्डिंग करते थे। उस रिकॉर्डिंग के दौरान खूब महिलाएं, कोई ऐसा मतलब व्यक्ति नहीं है जो गांव में जिसको पता लग गया कि आज कोई रिकॉर्डिंग रेडियो की होने वाली है। और रेडियो के नाम से तो इतना लोगों में लगाव था, क्योंकि सुनते थे, हर घर में रेडियो था, हर परिवार में रेडियो था, हर बूढ़ा बुजुर्ग महिलाएं सब सुनते थे, बच्चे भी सुनते थे। तो उनका फिर एक आकर्षण बन जाता था कि रेडियो वाले आ रहे हैं, तो देखने के उद्देश्य से ज़्यादा रहता। रिकॉर्डिंग तो चलो कुछ समझदार व्यक्तियों से की जा सकती थी, लेकिन देखने के हिसाब से इतनी भीड़ लग जाती कि हमें रिकॉर्डिंग करने में पूरा दिन लग जाता, लेकिन व्यवस्था जो है वो एकदम अच्छी करनी पड़ती, तब जाकर के रिकॉर्डिंग होती।
1: श्रोता रिवार्ड जी ने आकाशवाणी के लिए नाटक भी लिखे और उन्हें स्टूडियो में तैयार करके विभिन्न केंद्रों तक पहुँचाया, ताकि वो नाटक श्रोताओं तक पहुँच सके।
2: और देखो दिखाने बताओ कौन आए। अरे
3: आयो कौन, सर फुंको आयो फुंको सूर्य जी।

0: मैंने आकाशवाणी में काफी नाटक लिखे भी थे और उनको तैयार करके प्रसारित भी किए थे, तो वहाँ मैंने एक टीम राजस्थानी की तैयार कर ली थी। ये ज़्यादा विशेषकर मेरा सूरतगढ़ में ही हुआ था, तो सूरतगढ़ में मैंने 8-9 लड़के थे जो राजस्थानी में परफेक्ट थे और 2-3 महिलाएं थी, तो उनको तैयार किया, एक यूनिट पूरी बना ली नाटक की एक तरह से। तो उसमें मैं नाटक खुद मैंने 30-40 के करीब नाटक लिखे थे, तो उन नाटकों को हम तैयार करते थे। पहले तो लिखने में भी बहुत दिक्कत थी क्योंकि इस तरह का चलन था नहीं कि राजस्थानी में कोई नाटक कहीं मिले, ये भी एक अलग ही मेरी विधा थी कि मैंने पता नहीं कैसे लिखे और कैसे तैयार किए। तो इसमें मैंने वो टीम तैयार कर ली, खुद मैं लिखता था, जितने नाटक मैंने वहाँ बनाए सारे के सारे मेरे खुद के लिखे हुए हैं। एक तो नाटक है मिनक जूनी, ये मनुष्य के जीवन के बारे में है। बंटवारा, ये जमीन जायदादों के जो बंटवारे होते हैं, झगड़े होते हैं, उन पर नाटक था। अमरूदों का बाग, ये भी इसी तरह का था। इसी तरह मकड़ जाल, ये हमारे वन्य जीव जंतु जितने भी है इनको बचाने का जो नाटक मैंने बनाया था।
1: आपने बताया कि विभिन्न केंद्रों पर रहकर सहकर्मियों से बहुत कुछ सीखने को मिला। आकाशवाणी बीकानेर के सहकर्मियों का भी जिक्र किया।
0: जोधपुर में तो हमारे असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर थे मुरली मनोहर माथुर, तो वहाँ तो मुझे सीखने का मौका जो है उनके द्वारा मिला। इसके बाद में मैं सूरतगढ़ रहा, तो सूरतगढ़ में DC शर्मा करके सहायक केंद्र निदेशक थे, उनके साथ काम किया, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखना पड़ा। बाकी जो ये टीम जो हमारी थी वहाँ सूरतगढ़ में, वो ज़्यादातर जो हमारे ट्रैक्स पैक्स थे या जिनको हम कह देते हैं हमारे साथी स्टाफ थे, तो उनके द्वारा ही ज़्यादा होता था। सरोज भटनागर, उनके साथ काम किया था कुछ समय, उसके बाद में उनका थोड़ा ही टाइम था, रिटायर हो चुकी थी। उसके बाद में माथुर साहब करके थे, उनके साथ अमित सिंह जी थे, उनके साथ ज़्यादा समय बीता क्योंकि माथुर साहब भी यहाँ से चले गए थे। श्रवण जी आए थे कुछ दिन, वो भी बाद में ट्रांसफ़र हो गए थे, लेकिन शुरू से लेकर के लंबे टाइम तक अमित जी तो हमारे यहाँ साथ ही रहे और काफ़ी प्रोग्राम हम जो बनाते थे उसमें डिस्कस करते, विचार करते, आपस में जो भी कोई अच्छा प्रसारण है तो उसमें हमें आपस में सहयोग करके उसको बढ़िया बना करके पेश भी करते थे।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के संबंध में आपका संदेश कुछ यूं था।
0: मैं सभी श्रोताओं को और मेरे सुनने वालों को और साथ के स्टाफ को मैं ये कहता हूं कि 90 वर्ष क्या, 1000 वर्ष तक भी अगर रेडियो रहे तो मेरे ख्याल में जो अभी मैं पहले बता रहा था, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिसको हम दूर करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें अगर मिलेगी तो वो रेडियो पर ही मिलेगी। इसके अलावा कहीं शायद ऐसा संसाधन नहीं बना। कुछ बुक्स पहले छापते थे, छपते थे, लोग लेख

0: थे वो चीजें अब धीरे धीरे पीछे होती गई। अब अगर अच्छा प्रसारण कहीं मिलेगा तो रेडियो में ही मिल सकता है। दूसरा, हम ये नहीं कहते कि हमारा ही कोई आकाशवाणी में काम किया है तो हम उस वजह से कह रहे हैं, उस वजह से नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को या हमारे जो युवा साथी है या रोजगार से संबंधित जो बातें हैं वो इसमें जो जितना समझदारी के साथ बताया जाता है, किया जाता है, वो इतना और संस्थाएं नहीं कर रही है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आकाशवाणी ही मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सर्वोपरि हमारे परिवार, हमारे देश, हमारे जो ग्रामीण इलाका है या हमारा जो अनपढ़ है, गरीब है, उनके लिए ये साधन ऐसा है कि जिसके लिए उसको ना ज़्यादा खर्चा करना पड़ता, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। हर आदमी को सरल, सुलभ और सस्ता साधन है और हर चीज़ हर टाइम इसमें चलती है, मिलती है, ज्ञान भी बढ़ता है, ज्ञान मिलता भी है और ज्ञान में बढ़ोतरी भी करता है।
1: तो श्रोताओं, आज आपने पुराने श्रोता आकाशवाणी के पूर्व अधिकारी श्री भागीरथ रेवाड़ जी की आकाशवाणी से जुड़ी कुछ यादें और अनुभव सुने। इसी प्रकार हम पुराने श्रोताओं और आकाशवाणी से जुड़े महानुभावों को आपके समक्ष लाते रहेंगे। बस आपका प्यार यूं ही हमें हमेशा मिलता रहे। कार्यक्रम के संयोजक थे श्री अमित सिंह, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेघा की, वाचक स्वर था मधु शर्मा का। अब अगले अंक तक अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा।
3: ये कार्यक्रम था रेडियो का सफरनामा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने को है आकाशवाणी जयपुर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में होने वाले अपराधों के लिए अब संबंधित पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। राज्य सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 144 करोड़ 43 लाख रुपए की वार्षिक कार्य योजना और बजट को मंजूरी दी। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन शिरकत करेंगे और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में ऐतिहासिक जीत, मुख्यमंत्री ने जीत को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में होने वाले अपराधों के लिए अब संबंधित पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कल मुख्यमंत्री आवास पर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अलवर, श्रीगंगानगर और भरतपुर की हाल की घटनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे वहां संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। श्री शर्मा ने अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने साइबर ठगी रोकने के लिए साइबर पेट्रोलिंग बढ़ाने और अपराधियों के आर्थिक स्रोतों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रसूताओं की मृत्यु से संबंधित हर मामले को गंभीरता से ले रही है। वे कल जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में हुई प्रसूताओं की मृत्यु के मामलों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में स्त्री रोग विशेषज्ञों ने बताया कि अधिकांश मामलों में एनीमिया, उच्च रक्तचाप, प्रसव के बाद रक्तस्राव और कुपोषण जैसे कारण सामने आए हैं। श्री खींवसर ने विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर प्रसव पूर्व जांच, रेफरल व्यवस्था और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विभाग हर एक मामले की गहनता से जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
5: कब आई, किस हालत में आई, क्या बीपी था, क्या

0: कोमोबिड कंडीशन थे, क्योंकि आप देखिए जो अनफॉर्चुनेट पार्ट इसका, देखिए जो जहां हमारा नेशनल एवरेज है, राजस्थान जो है नेशनल एवरेज जो एमएमआर, हम विद इन द नॉर्म्स। इशू यही हुआ कि ये क्लस्टर्स में जो हुआ सडनली, उसका हम आपको पूरा जवाब देंगे। हम एक एक केस को स्टडी करके उसका पूरा सिनॉप्सिस निकाल के आपको एक एक चीज का जवाब आपको हम डिटेल्स में बता।
1: स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आज जयपुर में राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि यह वेबिनार प्रदेश के सभी पीएम श्री विद्यालयों के प्रधानों के लिए होगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, नवाचारों और सह शैक्षणिक गतिविधियों पर मंथन किया जाएगा। राज्य सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े मामलों के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 144 करोड़ 43 लाख रुपए की वार्षिक कार्य योजना और बजट को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई राजस्थान संरक्षित क्षेत्र संरक्षण समिति की सामान्य सभा की बैठक में ये स्वीकृति दी गई। बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि इस राशि का उपयोग वन्य जीवों के आवास सुधार, घास भूमि और जल स्रोतों के विकास, संरक्षण अवसंरचना, अनुसंधान, निगरानी तथा मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने के कामों पर किया जाएगा। बैठक में वन्य जीवों के लिए वर्ष भर पेयजल उपलब्ध कराने और स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधानों को भी मंजूरी दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल विधानसभा परिसर में अमृत महोत्सव का पहला कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि समारोह में राजस्थान से निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे, जबकि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा के 75 वर्षों में पारित महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा होगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और वरिष्ठ विधायकों का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विधानसभा के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। भारत मंडपम में लगाई जा रही देश की इस सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी का शुभारंभ केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे। 4 दिन की इस प्रदर्शनी में वस्त्र, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। ये निर्माताओं, निर्यातकों, वैश्विक खरीदारों, निवेशकों, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों, कारीगरों, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एक मंच पर लाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत एआई आधारित प्रशासनिक सुधारों के जरिए सुशासन के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। विशिलोंग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भविष्य के प्रशासन में एआई, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नागरिक केंद्रित सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। डॉ सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में लगभग 2000 अप्रासंगिक नियम समाप्त कर प्रशासन को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय वित्तीय स्थिरता और शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रहा। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के प्रधान महालेखाकार रामावतार शर्मा ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका केवल सरकारी खातों के ऑडिट तक सीमित नहीं है, बल्कि सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस सम्मेलन के माध्यम से विद्यार्थियों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई।
2: इसमें एक जो विषय है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो सीएजी जो कार्य करते हैं बहुत सारे कार्यों में

0: से एक टॉपिक है। सो ये भी एक स्टूडेंट्स के लिए जानने का होगा कि सीएजी केवल यही नहीं करते कि अकाउंट्स को सर्टिफाई करते हैं और ये देखते हैं कि खर्चा कैसे किया जा रहा है, लेकिन ये भी देखते हैं कि क्या सरकार किस प्रकार से सुशासन के उद्देश्यों को अचीव करने के लिए क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है और आगे क्या किया जाना चाहिए। वो सारी चीजें भी जो सीएजी बताते हैं उसको इस कॉलोकियम के माध्यम से स्टूडेंट्स और शोधार्थियों के पास पहुंचाने का एक प्रयास है।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। कल लॉर्ड्स में खेले गए मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रनों से करारी शिकस्त देकर एकमात्र टेस्ट श्रृंखला अपने नाम कर ली। 457 रनों के विशाल लक्ष्य के जवाब में अंतिम दिन इंग्लैंड 186 रनों पर ऑल आउट हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने कहा कि इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने आने वाली पीढ़ियों के लिए नया अध्याय लिखा है। इस बीच भारत और इंग्लैंड की पुरुष टीमों के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में होने वाले अपराधों के लिए अब संबंधित पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। राज्य सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 144 करोड़ 43 लाख रुपए की वार्षिक कार्य योजना और बजट को मंजूरी दी। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शिरकत करेंगे और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में ऐतिहासिक जीत, मुख्यमंत्री ने जीत को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:10 हो चुके हैं। समय है लोक संगीत का। आज सुनिए सोहनी देवी के गाए लोकगीत।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एनसीईआरटी का।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियां अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानने की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है,
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या

0: पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
1: जी।
0: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
1: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
0: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
1: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
0: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
1: जी।
0: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
1: जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे।
0: जी।
1: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
0: जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर।
1: जी,
0: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी?
1: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
0: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
1: जी,
0: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
1: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
0: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
1: जी,
0: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
1: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
0: श्रोता, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोता, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
0: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
0: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या।

0: यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
1: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
2: यस मैम।
1: वाह, क्या बात है
3: मैम।
1: हाँ बेटी,
3: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
1: बिल्कुल कहा।
3: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
1: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
3: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
1: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
2: यस मैम।
1: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
2: अच्छा।
1: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
2: अच्छा।
1: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
2: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
1: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही है।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम।
3: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं

0: उनके नाम इस प्रकार हैं, बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
1: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना। इसी

0: जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
5: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
4: जंगल के साथी।
6: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
7: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लू। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: सुनो ध्यान लगाकर सुनो सुनो कान लगाकर सुनो सुनो ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश। लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश। एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
3: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम

0: मेरे साथ ही बनोगे? मेरे साथ खेलोगे?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़ी मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो,
1: जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे फिर दादी माँ?
2: फिर
1: चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर।
1: और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
2: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: यानी खरगोश, हिरन और मैं।
2: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
2: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम। खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
2: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
5: जगबंधु,
4: चेतना
5: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला।

न्यू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। शुद्ध विचार शुद्ध भोजन से प्राप्त होते हैं, इसलिए आहार को शुद्ध रखें। सादा खाएं, सादा पहनें, सादा सोचें। सादगी में सरलता है।

संयम बनाए रखें, धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। जीवन संघर्ष है और संघर्ष चलने का नाम है। चलना यानी बदलाव जीवन की परिभाषा है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। समय है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम में सुनिए नई फिल्मों से गीत। पहला गीत है फिल्म आजा नचले से, आवाज़ है राहत फतेह अली खां की।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से फिल्म संगीत कार्यक्रम में नई फिल्मों से गीत आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म आशिक बनाया आपने से समीर का लिखा गीत, जिसे संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म एक्शन रिप्ले से अगला गीत।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है

0: पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत और कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं नई फिल्मों से गीत। अभी आपने सुना फिल्म डंकी से अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत जिसे इरशाद कामिल ने लिखा था, संगीत था प्रीतम का। फिल्म गीतों के सफ़र में लीजिए सुनिए अगला नगमा। आवाज़ विशाल मिश्रा की है, बोल राजशेखर के। गीत को संगीत भी विशाल मिश्रा ने दिया है, फिल्म का नाम

ये गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था एनिमल, आवाज़ थी विशाल मिश्रा की। नई फिल्मों से कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है बागी 4, आवाज़ है जोश बरार और परंपरा टंडन की। गीत को लिखा है कुमार ने, सलामत अली का है संगीत।

आपने सुना ये गीत, आवाज थी विशाल मिश्रा की, फिल्म थी धड़क 2। रश्मि विराग ने गीत को बोल दिए थे, जावेद मोहसिन का था संगीत। नई फिल्मों से कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत, देताली है फिल्म, आवाज श्रेया घोषाल की है। साथ ही आवाज सुनेंगे आप शेखर

ये गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था माय नेम इज़ खान, शंकर महादेवन की आवाज़ थी, साथ ही आवाज़ें आपने अदनान सामी और श्रेया घोषाल की सुनी। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अंतिम गीत, फिल्म का नाम है आँखों की गुस्ताखियाँ, आवाज़ विशाल मिश्रा की है, गीत को सुर और बोल भी दिए हैं विशाल मिश्रा ने।

बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सुनिए भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीतकार हैं RD बर्मन। गीत को लिखा है गुलजार ने और फिल्म है गोलमाल।

विशाल मिश्रा के गाए इस गीत के साथ फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नई फिल्मों से को यहीं समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से

फिल्म हाथी मेरे साथी का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है आरजू, स्वर है मोहम्मद रफी का।

0: शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाजों में फिल्म रफू चक्कर का ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम में आगे सुनिए येसुदास का गाया ये गीत फिल्म चितचोर से।
1: जब मैं 18 साल का था 1984 में, तो जो उस उम्र में सब करते हैं, मैंने भी किया। मुझे एक आई स्टार्टेड लाइकिंग अ गर्ल, लड़की का नाम गौरी था। तो मैं उनके घर के पास जाकर, या जहाँ पे नॉर्मली लवर्स मिलते हैं, गार्डन्स में या डिस्कोथेक्स में या रेस्टोरेंट्स में, जाकर उनके लिए गाना गाया करता था, विच वॉज़ गौरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया बारा आके यहाँ।

पत्थर के सनम इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम है भीगी पलकें।

नूरी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। स्वर थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है राम लखन। स्वर हैं मनहर और अनुराधा पोडवाल के।

0: घर फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत

लिए निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरम भूमध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जाँच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का यह अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 12:10 पर आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित सिंधी कार्यक्रम और जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:40 पर हमारे जयपुर केंद्र से।

दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे ग्रामीण महिलाओं में डिजिटल साक्षरता, थायराइड के असंतुलन से महिलाओं में समस्या, घर की इंटीरियर डिजाइनिंग वास्तु टिप्स, बारिश के दिनों में शिशुओं के कपड़ों की सफाई और फंगल इन्फेक्शन से बचाव। कार्यक्रम में रसोई से और ब्यूटी टिप्स के साथ आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

शाम 5:05 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा युवा जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका। लघु जानकारी के विषय रहेंगे एल्प्स पर्वत, हर रोज प्लानिंग करें, कालीबंगा, भारत छोड़ो आंदोलन,

शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे क्षारीय भूमि वाले खेतों में मृदा उपचार, मानसून में मौसमी बीमारियों से बचाव, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, गांवों में स्वरोजगार के विकल्प।

0: गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे शाम 7:45 और रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन के 12:40 पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 6:05 पर, रात्रि 8:00, रात्रि 9:15 पर और फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आज आप सुनेंगे रात्रि 10:00। यह था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित सिंधी कार्यक्रम।
1: गडोगड अवा गीत संगीत जो भी मजो माणींदा ए चर्चुन जो भी मजो माणींदा। जी त साथियों, अज अंतरराष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस आहे। हिन वेले शार्क दुनिया जी सभिनी खां वॾी मछी आहे ऐं इन्हनि जी लंबाई 18 मीटर खां बि वधीक आहे। बोनी लालटेन शार्क अटमोटसेन वेरी दुनिया जी सभिनी खां नंढी शार्क आहे, जंहिंजी लंबाई मात्र 15 सेंटीमीटर 6 इंच खां बि थोरी वधीक थींदी आहे। हिन खे ॾिसणु घणो कठिन आहे छो त हीअ 283 खां 439 मीटर जी गहराई में रहंदी आहे ऐं ॾखण अमेरिका जे उत्तर छोर ते इन खे बसि कुझु ई दफ़ा ॾिठो वेंदो आहे। हिन साल हिन ॾींहं जी थीम आहे संकट में शार्क भूमध्य सागर में कमु करण जी ज़रूरत आहे। हिन जो उद्देश्य इहो आहे कि शार्क मछली जे संरक्षण जे कमन के मजबूत करण आहे। हाणे अचो त साथियों ॿुधूं हीउ गीत सतरंग रोहरा ऐं साथियुनि जे आवाज़ में।

हा साथियों ॾिठव केतिरो सुठे नमूने इहो गीत ॻायो वियो छो त जीअं त किथे किथे बारिश त थिए वई पर किथे किथे बारिश न पई थिए त असां सदवा कयूं बारिश खे की जल्दी बारिश वरसि त मौसम थोरो सुठो थिए त अचो त हाणे असां ॿुधंदासीं डॉक्टर जी सलाह डॉक्टर जी सलाह प्रोग्राम में पूजा चांदवानी सां भेंट कंदी पूजा चांदवानी भेंट कंदी डॉक्टर सरिता नरसिंघाणी सां

0: सिंध जी सुरहान ए हिंद जी नवान सिंधियों जी शान बुधना रहो आकाशवाणी का सिंधी प्रोग्राम
1: जी हां श्रोताओं हमारे केंद्र से सिंधी कार्यक्रम आप सुनते हैं मंगलवार
2: गुरुवार
1: और रविवार जी
0: पहंजे माजी सागर है न वक्त के भू सरहिंदासी पहंजी पहचान मुजिब कणमा मन ठाहिंदासी सभी सिंधियों जे दिल जी आवाज बुधाइंदासी बुधना रहो पहंजो सिंधी प्रोग्राम
1: न भूलिए मंगलवार
2: गुरुवार
1: और रविवार जे
0: सिंधी प्रोग्राम
3: साथियों असासा कड़ा जाहिं डॉक्टर सरिता नरसिंहाणी जिनन खां असां अज इहो ॼाणींदासीं कि गर्मी जे मौसम में थियण वारियूं बीमारियूं कहिड़ियूं आहिनि ऐं उन्हनि जा बचाव छा आहिनि साथियो हिकड़ी ॻाल्हि आहे गर्मी जो मौसम ईंदे ही असांखे ख़ुशी त ॾाढी थींदी आहे छोकी लंबी सर्दीअ खां पोइ जॾहिं थोरी थोरी गर्मी ईंदी आहे त मन में हिकड़ी राहत मिलंदी आहे सर्दीअ जा कपिड़ा लाइ असां फिटी कंदा आहियूं छोकी महसूसु थींदो आहे कि हाणे त गर्मी अचणु खपे पर जॾहिं गर्मी ॾाढी वधी वेंदी आहे तॾहिं बि असां परेशान थी वेंदा आहियूं ऐं हिन गर्मीअ में अगरि असां पंहिंजी सिहत जी थोरी बि संभाल न कंदा आहियूं त असांखे बीमारियूं पकड़जी वेंदियूं आहिनि ऐं उहे कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि जेके असांखे गर्मी में जल्दी सां थींदियूं आहिनि उन्हनि जे बारे में ही अॼु असांखे डॉक्टर सरिता नरसिंहाणी ॿुधाईंदा त सरिता नरसिंहाणी जी तव्हांजो असांजे स्टूडियो में स्वागत आहे
4: नमस्कार
3: जीअं त असांखे ख़बर आहे मौसम बदलजी वियो आहे ऐं गर्मी थी रही आहे ऐं ॾींहों ॾींहुं गर्मी वधंदी थी वञे त गर्मी जे मौसम में कहिड़ियूं कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि जिन्हनि खां असांखे बचाव करणु ज़रूरी आहे
4: जीअं मौसम बदिलजे थो जीअं सर्दी हली थी वञे ऐं गर्मीअ आगमन थिए थो तीअं असांखे तेज़ गर्मीअ सां पाण खे बचाइण लाइ काफ़ी सारी चीज़ुनि जो ध्यानु रखणो पवंदो आहे सभिनी खां पहिरियों वॾी चीज़ आहे कि पाण खे लू खां असांखे बचाइणो आहे लू मतिलबु ॾाढी तेज़ गर्मी जंहिंजा प्रभाव असांजे मथां पवंदा ऐं उन माण्हू खे उल्टियूं थियणु लॻंदियूं या दस्त थियणु लॻंदा शरीर जो पाणी निकिरी वेंदो ब्लड प्रेशर किरी पवंदो ऐं उनजी जेका गति आहे पल्स जंहिंखे असां चवंदा आहियूं उहा तेज़ हलणु लॻंदी पेशाब ते अफेक्ट अची वेंदो पेशाब घटि अचणु लॻंदो ईअं कई तरह जा जेके आहिनि नुक़सान तेज़ गर्मीअ सां असांजे शरीर में थियण जा संभावना अचणु लॻंदा
3: बिल्कुलु डॉक्टर सरिता जीअं तव्हां ॿुधायो की गर्मी में सभिनीनि खां वधीक जेकी बीमारी थींदी आहे लूअ जी थींदी आहे त असांखे कीअं ख़बर पइजी वेंदी आहे की असांखे लू लॻी आहे ऐं उन सां बचण जे लाइ असांखे छा करणु खपे
4: सभिनी खां पहिरियों त इहो माण्हू खे ध्यान में रखणु खपे कि तेज़ गर्मीअ मां अंदरि जॾहिं माण्हू घर में अचे थो त अचण सां ई हिकदमि सां पाणी न पीजे पंज छह मिंट माण्हू थोरी देरि वेहे आराम करे उन खां पोइ पाणी पीए ऐं जेतिरो थी सघे ॿाहिरां जो खाइणु पीअणु ऐं पाणी वग़ैरह पीअणु ध्यानु रखे न पीए जेतिरो थी सघे पाण सां गॾु माण्हू पंहिंजो पाणी खणी वञे ॿाहिरां जो कीटनाशक जेके ॿाहिरि हेॾे होॾे फैलाइनि था या मच्छर वग़ैरह थियनि था उन सां काफ़ी नुक़सान थो अचे ॿियो जीअं जीअं टेम्परेचर वधे थो थी थो सघे कि सुबुह जो जीअं माण्हू कम ते निकिरनि था त हमेशह ईअं करनि कि पंहिंजो नाश्तो पाणी खाई पी करे निकिरनि त हुन सां शायदि चकर न ईंदो तेज़ गर्मीअ जो प्रभाव पंहिंजे मथां न ईंदो
3: मतिलबु त ख़ाली पेट घर खां ॿाहिरि न निकिरे गर्मी जे मौसम में कुझु न कुझु खाई करे ई घरां निकिरे
4: हा ऐं जेतिरो ज़्यादा थी सघे पेयजल जीअं आहिनि लस्सी आहे पाणी आहे शरबत आहे इहे सभु माण्हू थोरी थोरी देरि में पीअंदो रहे त उहो जेके असां डिहाइड्रेशन चवंदा आहियूं उस जे कारण प्रभाव जेको पए थो उहो न पवंदो
3: छा हिन जो कुझु घरेलू उपाउ बि असां करे था सघूं की जेसिताईं असां डॉक्टर वटि पहुचूं ऐं असांखे ख़बर नथी पए की असांखे लू लॻी वई आहे ऐं ॾिसूं था घर में की उल्टियूं दस्त आहिनि त असां घर में हिन जो छा इलाजु करे था सघूं
4: उल्टियूं वग़ैरह थियण लॻनि थियूं त पोइ माण्हू थोरो टाइम त खाइणु पीअणु बंदि करे छॾे जेको खाईंदो उहो उल्टीअ में माण्हू कढी थो छॾे ऐं जीअं मोशन ज़्यादा था थियनि पिया त सौंफ जो पाणी था माण्हू पीआरनि पिया इलेक्ट्रोल पाउडर घर में रखिजे इलेक्ट्रोल पाउडर पीआरजे जेतिरो थी सघे ज़्यादा पाणी पीआरजे इहो ॾाढो ज़रूरी आहे लस्सी पीआरजे ऐं उहे जेके आरारोट जा बिस्किट थींदा आहिनि उहो खाराए था सघनि केला वग़ैरह खाराए था सघनि त इहे सभु चीज़ूं घर में करे था सघूं
3: जी जी इन जे अलावा ॿियूं अहिड़ियूं कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि जेके गर्मी में असांखे परेशान कंदियूं आहिनि
4: ॿियूं बीमारियूं जेके बुखार सां गॾु ईंदियूं आहिनि मलेरिया थो थिए टाइफाइड थो थिए

0: जड़ थींदी आहे इन जे अलावा पाण खे शरीर खे स्वस्थ रखणो आहे स्नान पाणी चाहो त ॾींहं में ॿ दफ़ा बि करे था सघो ऐं जेका गर्मी पसीने सां जेका चीज़ निकिरंदी थी वञे असांजे शरीर मां असां उनखे जीअं घमोड़ियूं वग़ैरह निकिरी अचनि त उहो पाउडर अॼु काफ़ी सारा निकिता आहिनि उहो असां लॻाए था सघूं हिकिड़ो कैलमिन नाले जो लोशन ईंदो आहे जेको खुजली मिटाईंदो आहे उहो लॻाए था सघूं असांखे सर्दी ज़ुकाम थिए थो कई माण्हुनि खे नक्सीर अचणु लॻंदी आहे खून अचणंदो आहे नक मां नक जे अंदरि जो जेको पोर्शन आहे उहो हिकदमि सुकी वेंदो आहे ड्राई थी वेंदो आहे त कई नंढा ॿार उनखे रगड़ण जी कोशिश करे ऐं कढण जी कोशिश कंदा आहिनि उन सां खून अची वेंदो आहे त इहो सभु न करणु खपे तव्हां चाहो त अंदरि वैज़लीन लॻाए था सघो पाणी जी मात्रा प्रॉपर रखो ऐं जेतिरो ज़्यादा जल्दी बुखार अचे उहो बुखार खे जल्दी सां जल्दी घटि करण जी कोशिशि कयो ॿियो हिकु ॿी ॻाल्हि डेंगू बुखार में मच्छर था कटनि त थी सघे त बिना ॿाहुनि जा जेके कपिड़ा आहिनि या नंढा सन्हा कपिड़ा आहिनि उन हिसाब सां न पायो पाण खे मच्छरनि खां बि बचाइणु ज़रूरी आहे
1: आसे पासे सफ़ाई जो
0: सफ़ाई जो ध्यानु कूलर थियनि था कूलरनि में पाणी जमा न रखिजे पासे में किथे बि पाणी जमा आहे त उन्हनि जी साफ़ सफ़ाई करणु ज़रूरी आहे रोटी आहे न गर्मीअ में छा थींदो आहे कीटाणु जेके थींदा आहिनि उहे बैक्टीरिया जल्दी पनपण लॻंदियूं आहिनि त रोटी भाॼी जेको बि कुझु आहे सामान उहो ख़राब थियणु लॻंदो आहे फ्रेश ठाहियो ऐं फ्रेश खाओ भले फ्रिज में रखूं था लेकिन फ्रिज में बि उनखे ख़राब थियण जी संभावना थींदी आहे
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब तव्हां असांखे ॾाढी सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं की गर्मी जे मौसम में जेकी बीमारियूं थींदियूं आहिनि उन्हनि खां असां कीअं बची सघूं था ऐं घर में ही असां फ़िलहालु घरेलू इलाज ॾेई करे बि उन्हनि खां बचाव करे था सघूं ऐं अगरि असांखे कंट्रोल नथो थिए त असांखे जल्दी ई डॉक्टर वटि वञणु खपे ऐं उते टेस्ट कराए ऐं असांखे पंहिंजो इलाज कराइणु खपे तव्हां असांजे स्टूडियो में आयो तव्हांजो ॾाढो ॾाढो धन्यवाद
2: धन्यवाद साथियों हींअर अवां डॉक्टर जी सलाह प्रोग्राम जे तहत डॉक्टर सरिता नरसिंघाणी खां भेट करे रही हुई पूजा चांदवानी ही अवां प्रोग्राम ॿुधी रहिया हुआ हाणे अचो त ॿुधूं लता जी आवाज़ में ही सुहिणो सो गीत

साथियों हिंदर वहाँ लता जी आवाज में ही सुनो सो नगमों बुद्धि रहा वा ते जी अत साथियों सुबाने 15 जुलाई आहे ते विश्व युवा कौशल दिवस आहे असान जो मन्यन आहे ते कौशल जीवन बदलजरण लगंदो आहे कौशल जी ताकत सा मानु समुदाय ए देश अधिक समृद्ध भविष्य जी अग्या वदंदो आहे हन डिया के मलायन जो खास मकसद यो आहे युवा वर्ग जे स्किल ए उन जे कमन के डेवलप कंदो आहे जेसा युवाओं के स्वरोजगार सा गड आत्मनिर्भर ठायो वेंदो आहे हन डिया युवा वर्ग लाए तमाम खास थिंदो आहे संयुक्त राष्ट्र जे युवा 15 खां 24 साल जे उम्र आहे एक युवा पेंजे समूह में एक सकारात्मक ए उत्साहजनक माहौल ठाइंदो आहे अज जे वक्त में डिजिटल ए तकनीकी कौशल घणो जरूरी आहे भारत में स्किल इंडिया जहरियों योजनाओं युवाओं जे कौशल विकास के बढ़ावो दींदी आहिन ए हिय आर्थिक ए सामाजिक प्रगति ब खास योगदान दे थी जी युवा असांजी दुनिया जो भविष्य आहे असांगे हर कुशल मानव जो सम्मान करण गुर्जे ए हां साथियों हे डी असांके यो ही संदेश दे थो त कौशल ही सफलता आत्मनिर्भरता ए राष्ट्र निर्माण जी सबनिन खां वडी शक्ति आहे शिक्षित थियण सा गडो गड कुशल थियण ब ओतरो ही जरूरी आहे अगर असांजे युवा ज्ञान तकनीक ए कौशल खां पूरो थिंदो त वो न केवल पहंजो भविष्य उज्जवल ठाइंदो बल्कि भारत के एक विकसित समृद्ध ए आत्मनिर्भर ए विश्व में अग्रणी राष्ट्र ठाइण में भी खास भूमिका निभाए थो इन करे हर युवा के लगातार सिखण पहंजे कौशल के निखारण ए समाज ए देश जी प्रगति में सक्रिय योगदान देण जो संकल्प होणो गुर्जे त साथियों अचो त प्रोग्राम जे आखिर में असां बुधूं था ही गीत

साथियों हिनर अवा आजाद सूफी जे आवाज में ही गीत बुधी रहा वा हिन गीत सा गड ही असा जे प्रोग्राम जो वक्त इते ही पूरो तो थिए वरी हाजिर थीना सी इंदर विस्पत ते इय ही डिय में 12 लगी 10 मिनट ते सिताई इजाजत दींदा हिनता बालवाणी के नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित सिंधी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है थानेदार। स्वर है पंकज उदास, लता मंगेशकर और साथियों के।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: बेटा फिल्म में अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाजों में गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के एक बजने को हैं। प्रस्तुत है हमारे जयपुर
1: के। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। देश का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस चार दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में वस्त्र, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। ये निर्माताओं, निर्यातकों, वैश्विक खरीदारों, कारीगरों, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एक मंच पर लाएगा। इस आयोजन में 7,000 से अधिक खरीदारों और 20,000 से अधिक

0: वस्त्र उत्पादों की भागीदारी रहेगी, साथ ही इसमें 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटपूतली बहरोड जिले के पावटा दौरे पर रहेंगे। वे प्रागपुरा नगरपालिका में आयोजित शहरी सेवा शिविर में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के पीएम श्री विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए आज जयपुर में राज्य स्तरीय वेबिनार आयोजित की जा रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हो रहा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे इस वेबिनार में प्रदेश के करीब 550 पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधान शामिल हो रहे हैं। वेबिनार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, विद्यालयों में नवाचार, सह शैक्षणिक गतिविधियों और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से उपलब्ध कराए जा रहे फंड के प्रभावी उपयोग पर भी चर्चा हो रही है। कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। राजस्थानी लोक संगीत और संस्कृति को नई पहचान दिलाने वाले और राजस्थान रत्न से सम्मानित केसरी चंद मालू का कल देर रात निधन हो गया। उन्होंने राज्य की समृद्ध लोक परंपराओं, गीत संगीत और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में विशेष योगदान दिया था। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बागड़े ने कहा कि उनका निधन राजस्थान की लोक संस्कृति और संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने शोक संदेश में कहा कि लोक संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने शोकाकुल परिजनों और उनके शुभचिंतकों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति देने की कामना की। झुंझुनू जिले में किसान अब कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली बागवानी और ड्रिप सिंचाई तकनीक अपना रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान का प्रभाव जिले में दिखाई देने लगा है। केसरीपुरा गांव के प्रगतिशील किसान ने ड्रिप सिंचाई के माध्यम से करीब 90 से 100 बीघा क्षेत्र में बेर, किन्नू, मौसमी आम, बेल और चीकू का बगीचा विकसित किया है। उनका कहना है कि इस तकनीक से पानी की बचत होती है, लागत घटती है और उत्पादन बढ़ता है। उनका परिवार सालाना करीब 50 लाख रुपए का कृषि कारोबार कर रहा है। नीट यूजी पुनः परीक्षा 2026 के अभ्यर्थी रिकॉर्डेड रिस्पांस शीट पर अपनी आपत्तियां कल सुबह 11 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। एनटीए ने कल ये शीट जारी की थी। अभ्यर्थी प्रति प्रश्न 200 रुपए का शुल्क देकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन के बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा कर रिस्पांस शीट डाउनलोड करनी होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र की लोकेशन के लिए केवल गूगल मैप पर निर्भर नहीं रहने की सलाह दी है। आयोग ने कहा है कि तकनीकी कारणों से कुछ परीक्षा केंद्रों की लोकेशन गूगल मैप पर स्पष्ट नहीं हो सकती, इसलिए अभ्यर्थी परीक्षा के दिन से पहले ही ई प्रवेश पत्र में दिए गए पते के अनुसार परीक्षा केंद्र का भौतिक सत्यापन कर लें। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 1:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

0: घर आंगन सुनन वाली मारी सगली बहना ने मारी खाचारे
1: और मनोज खंगार उतरा
0: घणान घणान
1: राम राम सा।
0: और मनोज बहन अबार कई दिनों बाद मिलने हुए
1: हाँ।
0: कहीं हालचाल है?
1: बिल्कुल एकदम देखो बढ़िया है रेखा बहन, और आपने मैंने देख रहा भी लाग रही होसी कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और देखो उम्मीद है कि कार्यक्रम सुनने वाली आपनी जो बहना है नी ये भी एकदम राजी खुशी और एकदम स्वस्थ होवेला।
0: बिल्कुल बिल्कुल मनोज बहन आप पर थाने वा पुरानी सखी याद है विमला? अरे वो क्या है कि अभी थोड़ा दिन पहले ही मैंने बाजार में मिली थी।
1: अरे वाह।
0: और याद है जद वह हमेशा ही कितनी हंसती मुस्कुराती रहती थी।
1: मैं तो बिना जद भी याद करूँ नहीं तो भी कोई एक हंसते मुस्कुराते चेहरे ही मेरे आंखों के सामने आवे।
0: और पर 20 दिन तो बुझी बुझी सी बीमार लागती।
1: तो फिर थे पूछा को नहीं कि काई बात हुई?
0: हाँ हाँ मैं तो देखो बिना पूछी कहीं हो क्या हो तो बात तो बस नहीं नहीं थोड़ी सी थकान है ज्यादा कुछ को नहीं इयो बोली।
1: अच्छा।
0: लेकिन मैं तो फिर देखो जोर लगा रही पूछियो तो बोली कि कई महीने से शरीर में अजीब सी कमजोरी रहे, काम करने रो मन ही करे कोनी, बात बात पर रोण आवे, चिड़चिड़ोपन रहे, बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे है और वजन भी बढ़ रहे है, ई कारण घर से बाहर जाने में भी ने शर्म आवन लाग गई।
1: देखो बेना आ बात तो आपा महिलावा आपरे मतलब आ बात एक कॉमन सी बात है कि आपा महिलावा जो हाँ आपने जो दर्द रहे ने बिने सहज बना देवा। हाँ कोई पूछे तो बस कह देवा हाँ कि थोड़ी थकान है ज्यादा को नहीं बस ठीक हो जासी।
0: हाँ बिल्कुल सही कहो साची बात मनोज बहन, पर शरीर भी तो आपरो ही है, अगर आपा ही आप रो ध्यान नहीं राख सो तो फिर कौन राख सी।
1: सही बात।
0: और शरीर जद बार बार कोई संकेत देवे नी तो अनदेखो तो करना बिल्कुल ठीक को नहीं।
1: सही बात।
0: और आ ही बात में विमला ने कही कि डॉक्टर ने एक बार दिखा रहा और आज सुबह ही बियारो फोन आ गयो कि बात थायराइड री समस्या सु ग्रसित थी।
1: ओहो रेखा आजकल तो देखो आ बीमारी नहीं बहुत सी महिलावर मायने देखने ने मिले है। अगर लेकिन एक चीज है कि समय पर पहचान हो जावे नहीं तो बीमारी रो तो देखो बिरो इलाज भी संभव है और एक सामान्य जो स्वस्थ जीवन जो है वो भी जियो जा सके है। तो बिना आज आपारे कार्यक्रम में आपा इन री ही चर्चा कर सियां कि थायराइड असंतुलन री समस्या काई है, इनरा लक्षण काई है और इनसु की बचो जा सके है। तब तक थे जुड़ेड़ा रीजो, अब फिलहाल एक गीत सुन लो और फिर पाछा आता ही आपा ई विषय पर और चर्चा करा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार।

0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: रेखा बेन, जीवन री देखो सबसे बड़ी पूंजी जखी होया करे नी बात धन दौलत नहीं बल्कि आपनो जो स्वास्थ्य है नी वो होया करे।
3: बिल्कुल,
2: आप देखो आपन कन्ने घणो धन है, आप एकदम समृद्ध हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य आपनो कमजोर है तो कहीं आपा उत्ता आनंद रस आगे जीवन जी सका
3: नहीं।
2: लेकिन अगर आपा कने धन भले ही कम हो पर अगर आपनो स्वास्थ्य अचोक हो, आपा निरोगा हां, तो धन तो फेरू अर्जित करियो जा सके है, है कोनी। तो बिना इनके लिए जरूरी है कि आपा ने अपना जो स्वास्थ्य यानी भी ने कदे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इनके प्रति हमेशा आपा ने जागरूक रहना चाहिए। और जिकी आ थायराइड संतुलन की जो समस्या नहीं, अभी आपा गीत सुन पहले जिनके पर बात भी करी, तो सबसे पहला तो बिना वो जानना जरूरी है कि आ कोई बीमारी रो नाम को नहीं बल्कि आपारे गले में मौजूद एक छोटी सी ग्रंथि रो नाम है। आ ग्रंथि इसा हार्मोन बनावे जिनसे शरीरी ऊर्जा, वजन, हृदय री धड़कन और कई महत्वपूर्ण कार्य ने नियंत्रित करे है।
3: अच्छा, यही हार्मोन कम या ज्यादा बढ़न लाग जावे तब शरीर माए कई तरीके री परेशानी जिकी वेनी वा आनी शुरू हो जावे। वे वजह री थकान, सुस्ती, वजन रो बढ़नो तो कईयों रो तो घटन भी लाग जावे।
2: हाँ।
3: बाल झड़ना, त्वचा रो रूखापन, हर समय नींद, चिड़चिड़ोपन और मासिक धर्म में अनियमितता तो इरा लक्षण हुए।
2: रेखा बेन, देखो कई बार हुए कि आ जो समस्या है नी, इन्हें अक्सर जो बेना है वे सोचे कि ये जो समस्या है आपारी कमजोरी जो अपने महसूस हो रही है, ये सब या तो बढ़ती उम्र असर हो सके है, और वो सब समझ रहा आप जो अपनी बहना है वे टाल भी देवे कि लगे बढ़ती उम्र के कारण अपने गोड्डा में दर्द हो रही है या अपना हाथ पैर दुख रहा है, हाथ पैर में सुन आपने महसूस हो रही है। पर बेना अगर लंबा समय तक ये लक्षण रहे नहीं तो तुरंत आपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इरी जांच करा लेनी चाहिए और एक साधारण सी रक्त जांच से ही इरी पहचान करी जा सके है।
3: साथ ही बहना अगर जांच में थायराइड आ भी जावे नहीं तो समय पर इलाज और दवा लेनी तो शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और तनाव ने तो कम ही रखना क्योंकि केवल तनाव ज्यादा लेवन तो कभी कभी बीमारी ज्यादा हावी हो जावे।
2: सही कह रहे,
3: डॉक्टर ही सलाह रे बिना ना तो कोई दवा शुरू करनी है या कोई दवा बंद भी नहीं करनी चाहिए और नियमित जांच भी करवाती रहनी चाहिए।
2: हाँ बिना बिना याद रखो कि बीमारियों से डरने की कभी जरूरत को नहीं होया करे बल्कि बीरी समय पर पहचान कर सही इलाज कराने की जरूरत होया करे। तो बिना आपरी आपारी जो चर्चा है नी आज री, इनसू एक बात तो आपने समझ में आ गई होसी कि जिन तरीके से आपा पूरा परिवार री जरूरत तो आपा पूरी परिवार रा स्वास्थ्य रो ध्यान रखा हानी बिल्कुल उन्हीं तरीके रू आपने अपने स्वास्थ्य रो ध्यान रखनो भी आपनी ही जिम्मेदारी है।
3: बिल्कुल, क्योंकि स्वस्थ जी की महिला है नी वा स्वस्थ परिवार ही आधारशिला हो।
2: सही बात,
3: जब वा स्वस्थ और खुश हुसी नी तो पूरे परिवार में खुशियां बनी और रहसी। अब आपा आपारे कार्यक्रम में खुशियों ने बरकरार रखो, एक गीतर ले रे सागे।

0: मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: प्रति रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: मनोज बहन एक छोटी सी बात है, काल रीज है कि मैंने बाजार से आ रही थी तो बस स्टैंड के पास एक बहना बड़ी परेशान लाग रही थी।
2: अच्छा।
1: और थाने ठा तो है ये कि जद को ही परेशान दिखे नहीं तो मैं तो झट सु बिना पूछ भी लूं।
2: फिर काई भी परेशानी रो पतो चालो आपने क्यों परेशान ही वा
1: कि बस उनो कहियो कि वा मोबाइल पर लगातार भी रेके बैंक रे नाम से भी रेके संदेश आ रहा था।
2: अच्छा।
1: कभी पासवर्ड कभी ओटीपी कभी कोई बटन पर क्लिक करना हो और फोन भी आ रहा था और वह एकदम परेशान थी कि कहीं करूं।
2: अच्छा।
1: कोई जरूरी संदेश है या कोई बैंक रो काम आए गयो है जबकि तो क्या सब कुछ फ्रॉड ही निकल गया।
2: अच्छा।
1: और जब मैं सोची कि आज मोबाइल तो हर हाथ में है
2: सही
1: पर इस्तेमाल करना या बैंक रो काम पैसा भेजना हो या इन तरीके रहा जितना भी फ्रॉड संदेश है इन्हें कोकर हैंडल करना सबने समझना आवे ही को नहीं।
2: सांची बात है रेखा बेन। देखो बिना आज रे बकत रे मायने पढ़े लिखे होनो जितो जरूरी है नी उतो ही जरूरी है डिजिटल रूप से साक्षर होनो। और डिजिटल साक्षर रो मतलब है कि मोबाइल इंटरनेट और जो डिजिटल सेवा है नी उन सबरो सही सुरक्षित उपयोग करनो आनो चाहिए। यानी मोबाइल चलानो ही नहीं बल्कि बेर सही और समझदारी से बिना इस्तेमाल करनो आपाने आनो चाहिए ताकि आप जी हां रेखा बहन बताया कि बा बहन कितनी परेशान हो रही तो बिना पतो होनो चाहिए कि मतलब कोई ना कोई डिजिटल फ्रॉड हो सके है।
1: हां आजकल तो देखो नी हर काम चाहे वो किसो भी हो बैंक रो काम हो कोई बिल भरनो हो सरकारी योजना री कोई जानकारी हो या कोई फॉर्म भरनो हो सब कुछ मोबाइल पर हुए। और जब महिलाओं में जिकीरी जानकारी हुए नहीं तो आज दूसरों पर निर्भर होने रे बजाय खुद काम कर सके।
2: सही है।
1: ये वास्ता और भी जरूरी है कि सागे सावधानी क्योंकि कई बार ठग जिका हुए नी तो बैंक अधिकारी पुलिस जज या वकील बनपरा फोन करपरा आपस ओटीपी या पिन या कोई पासवर्ड या इससे कोई आपारी जानकारी मांगे जिकी देनी बिल्कुल भी कोनी
2: वे। बिल्कुल बेना। और इन कारण देखो याद रखो कि जो ओटीपी है एटीएम है पिन या बैंक रा जो पासवर्ड है ये कभी भी किने भी आपने नहीं बताना चाहिए क्योंकि एक चीज है कि बैंक जो है इसी जानकारी फोन पर कभी भी कोनी मांगा करे। डिजिटल साक्षर जब एक महिला होवे तो बा घर बैठा देखो आपरो छोटा जो व्यवसाय है बारो प्रचार प्रसार कर सके। आजकल आप देखो हर अपना कार्यक्रम में भी बात करा यहाँ की अपना जो भी छोटा मोटा व्यवसाय जो हर जो अपनी बहन ने भी ने क्या करे ना स्वावलंबी बनना चाहिए खुदरा काम भी ने करना चाहिए आर्थिक रूप भी ने सशक्त होना चाहिए तो इन सशक्तता रे मायने कटे ने कटे भी डिजिटल रूप से साक्षर होना भी जरूरी है। जी हाँ अगर आपकी कोई बहन है अगर आप कोई छोटो मोटो काम धंधो शुरू करिए तो मोबाइल रे जरिए बीरो प्रचार प्रसार कर सके है। मोबाइल रे माध्यम से आपारा जो भी बीरा उत्पाद है आप देखो आजकल कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वे आपने जो बनाया रखे है पर अपनी जो भी बारा उत्पाद है बने बेच सके है आराम से ग्राहक आराम से पहुंच जावे है। और इनके अलावा देखो बच्चा री पढ़ाई आजकल मोबाइल के जरिए अभी बड़ी आसान हो गई है तो इन रो आप भी उपयोग कर सका। हाँ और डिजिटल रूप से सशक्त जो महिला है नी बहना बा अपना अधिकार प्रति भी जागरूक होया करे है। अगर सरकार री कई योजना है जो अपने बहना रे खातर चलाई जाया करे तो अगर बहन कोई बहन अपनी डिजिटल साक्षर है तो बा उन योजना से जुड़ भी सके है बिना योजना रा काई प्रावधान है योजना से बिना काई लाभ है बस सब कुछ बिना पतो हो सी और बा योजना रो लाभ उठा पासी।
1: सही कह रहे हो। और आई तो सच्ची आत्मनिर्भरता उसी कि जब ज्ञान भी आप रोवे और निर्णय जिका लेना वनी वीरो आत्मविश्वास।
2: सही कह रहे हो।
1: तो बेना देखो सीखने में तो बिल्कुल भी संकोच और शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर थारे आसे पासे या थारे घर में आई थारे जिका टाबर है या बेटा बेटी आप सके नहीं आजकल तो
2: आजकल तो छोटे छोटे टाबर आप ज्यादा तो छोटा छोटा टाबर चला बो आवे आजकल तो बस सीखना चाहिए
1: अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए क्योंकि सीखने की कोई उम्र है और एक एक नया कदम ही आपने आत्मविश्वासी बनावे और आगे बढ़ने री आपारी रहने हुए नी वह आसान बना।
2: सही कह रहे हो।
1: तो बिना आज आपने आई एक संकल्प तो लेना ही चाहिए कि डिजिटल दुनिया से आप डर सो को नहीं बल्कि बिना समझ सो सीख सो और सुरक्षित तरीके से भी ने अपना सो
2: बिल्कुल। तो चलो ये एक बढ़िया सा संकल्प सागे आप बहना ने एक बढ़िया सो गीत भी सुना दे
1: जरूर।

0: बिना बरसात रो जो मौसम है नी, देखो राहत तो ल्यावे ही है, पर सागे सागे नमी और गंदगी रे कारण कई तरह री बीमारियां भी साथ लावे है। खास कर अपना जो नाना मुना टाबर है नी बाण रे खातर, क्योंकि देखो बारी जो त्वचा है बाबिया ही बहुत कोमल होवे है, और अगर बारा कपड़ा साफ और सूखा नहीं होवे तो फिर बाण रे मायने फंगल इन्फेक्शन होने रो खतरो भी बढ़ जावे है।
1: हाँ मनोज बहन, और देखो नी आपा बड़ा लोग तो सब समझा
0: सही कह रहे
1: कि आला कपड़ा होवे नी वोने सुखानो है, साफ सुथरो रहनो है,
0: सही बात।
1: पर वे जिकी नानी नानी जान होवे नी वे कोनी जाने, माने तो आपा जिया राखो वे तो भी यही रहवे।
0: सही है,
1: तो बेना थोड़ी सावधानी तो राखनी ही पड़सी आपा लोगों ने, ताकि टाबरा ने संक्रमण जी को वे फिर खतरो नहीं रहे।
0: बिना इनके खतर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिखी आपा ने ध्यान रखनी है। जी हाँ, देखो छोटा टाबरा रा कपड़ा हमेशा आपा ने गर्म पानी से धोना चाहिए, और हल्का साबुन हुए उनसे आपा ने धोना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि बाने आपा अच्छे से निचोड़ा, ताकि जो साबुन रो अंश है वो बिंडरे में से निकल जाए।
1: बिल्कुल, और बेना बरसात रे वक्त देखो तावड़ो तो कम मिले ही है, तो कोशिश करो कि कपड़ा ने हवादार जगह सुखानो, और फिर भी कपड़ा सीला रह जावे तो प्रेस कर कपड़ा टाबरा ने पहराना। कदई भी बाने सीला कपड़ा नहीं पहराना चाहिए, क्योंकि सीला कपड़ा पहराने से भी जगह पर फंगल इन्फेक्शन रो खतरो बढ़ जाया करे।
0: सही कह रहे हो, बिना टाबरा रा कपड़ा ने कदे भी, एक चीज है कि बड़ा रा जो कपड़ा होया करे ना बड़ा लोगा रा बांके सागे कदे नहीं धोनो चाहिए। आप बिना देखो आ तो हुई कपड़ा री बात, इनरे अलावा जो शिशु री त्वचा री जो सिलवटा है जिया गर्दन है बगल है जांगा है आने भी आपने साफ और सूखो रखनो चाहिए। और अगर देखो त्वचा पर लाल चकता कई बार हुए नी मौसम के कारण, या खुजली या फिर दाना जिया आपने दिखाई देवे, तो घरेलू उपचार करने रे बजाय आपने तुरंत डॉक्टर ने दिखाना चाहिए, क्योंकि बा बहुत नानी जिलफ है भी बा इतो महसूस इतो किया करने सहम को नहीं कर पावे।
1: मैंने कई बार तो माया सोचे है कि बच्चों ने ज्यादा कपड़ा पहनना,
0: हाँ।
1: तो माने ठंड को नहीं लाग सी, पर जरूरत सु ज्यादा कपड़ा पहनना

0: महसूस भी पसीना आ जावे और नमी बढ़ जावे। ई वास्ता मौसम रे अनुसार हल्का आरामदायक और सूती कपड़ा ही टाबरा ने पहनाना चाहिए।
1: और बेना देखो एक ईदे सगे सगे जो टाबरा रो तोलिया है, बारा कपड़ा है, बारा बिस्तर है, वे भी आपने हमेशा साफ रखना है और समय समय पर बने धो और अच्छी तरह सुखा रखना है। रेखा बहन देखो क्या हो ना कि माँ बनने के साथ जो जिम्मेदारियां है नी वे भी बढ़ जाया करे, लेकिन थोड़ी सी सावधानी अगर आप बरता तो अपना नाना मुना जो है वे कई परेशानियां से बच सके है। आखिर देखो रेखा बहन बच्चा री जो मुस्कान हुआ अगर भाई तो पूरा घर री मुस्कान है। तो बेना आप भी इन बरसात रे मौसम रे मायने आपने जो शिशुआरी साफ सफाई है, बारा कपड़ा है, बारी त्वचा री पूरी देखभाल रो विशेष ध्यान रखो।
0: सही कह बाबू की छोटी सी सावधानी, क्योंकि आप जितनी भी सावधानी बरतवा हुए छोटी सी है पर मेरा लाभ बहुत बड़ा हुआ है।
1: सही है।
0: तो बेना कार्यक्रम में आगे बढ़ाओ ई गीतर लरे सागे।

0: मनोज बहन, कल मारी मैं मौसी रे नए घर में गई थी, तो घर तो बहुत बड़ो कोनी हो, पर हाँ सजाड़ो बड़ो सलीके सु हो कि मार तो मन ही खुश हो गयो।
1: तो फिर तो आप बारी खूब तारीफ भी करी होली मसीरा घर में।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखो बेना, एक एक कहावत होया करे रेखा कि जिसो घर बसो मन। देखो घर केवल ईंट और भाटा रो ढांचो को नहीं होया करे, बल्कि परिवार री खुशियां, सुकून और सकारात्मक ऊर्जा रो केंद्र होया करे है। और थोड़ी सी करी गई इंटीरियर डिजाइनिंग और संतुलित वास्तु व्यवस्था यानी में ना घर में फुटरो व्यवस्थित और आरामदायक बना सके है।
0: आ तो है मनोज बहन, लोग आजकल इंटीरियर डिजाइनिंग यानी कि आंतरिक सजावट जी करी इन्हीं भी पे बहुत ज्यादा ध्यान देवन लग गया।
1: सही कह रहे हो।
0: इरो मतलब खाली सजावट ही कोनी, बल्कि देखो कि घर माए प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवारो पर्याप्त प्रवेश होना चाहिए। घर ने ज्यादा सामान सु नहीं भरना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरो और व्यवस्थित घर सकारात्मकता वातावरण है नहीं वो बनाए रखे। अगर घर छोटो भी हो लेकिन सामान आपकी जगह पर रखेड़ो हो, अच्छी रोशनी आती हो, हवा आती हो, तो कहीं नहीं घर तो अपने आप ही आकर्षक लगे।
1: वैसे ही। और देखो रेखा, आजकल तो हर मिनक घर बनाते वक्त जो है वास्तु रो भी ध्यान रखे है बना। लेकिन एक चीज मैं आपने कह दूं कि वास्तु रा नाम पर देखो महंगा बदलाव करने की आवश्यकता कदे को नहीं आकर है। घर री स्वच्छता, पर्याप्त प्रकाश, हवा और सुव्यवस्थित अगर व्यवस्था है तो ये सब

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरु मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरु मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।

0: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
1: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
0: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम ज़ुल्फ़ाग़री ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज़ जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने

0: उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए होचिमिन सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश

0: पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में फिल्म का नाम है मोहरा।

डुप्लीकेट फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना कुमार सानू के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है कसूर, स्वर है अलका याग्निक और कुमार सानू के।

बागी फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मीत ब्रदर्स अरिजीत सिंह रोज किल्ला और खुशबू ग्रेवाल की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है सिम्बा, स्वर है अरिजीत सिंह, आशीष कौर और कुमार सानू के।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बज रहे हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हमारी नियमित सांध्यकालीन सभा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को हैं, हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। दूसरी सभा में लीजिए सबसे पहले सुनिए देश और दुनिया की खबरें समाचार के अंतर्गत।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय दो जहाजों एमटी अलबैया और एमटी मोम्बासा पर हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को बुलाकर इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोनों जहाजों पर सवार 46 सदस्य चालक दल में 30 भारतीय नाविक थे।

0: विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटीएल भैया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई और एक घायल है। एमटी मोम्बासा में सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह विश्वभर के लोगों की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हैं। इससे पहले अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले रखे, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावों को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने का साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब तक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर वर्ष इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विद्यार्थी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ये समापन सत्र राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्षगांठ समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में मूसलाधार बारिश के दौरान एक मकान की छत गिरने से मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 12 अन्य लोग घायल हैं। ये घटना कल रात कोहाट जिले के बाहरी इलाके में स्थित मालिंगिन गांव में हुई। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 82 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब हमारे युवा मित्र अपना कार्यक्रम सुनेंगे, युववाणी।

0: गीता, ज़रा बताओ, अगर तुम्हें किसी ऐसे शहर में छोड़ दिया जाए जहाँ ना कोई पहचान हो, ना कोई नक्शा और ना ही इंटरनेट, तब सबसे पहले तुम क्या करोगी?
1: सबसे पहले तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढूंगी जो शहर को अच्छी तरह से जानता हो, क्योंकि कभी कभी अनजान रास्तों में गाइड मिल जाए तो सफ़र आसान हो जाता है।
0: और दोस्तों, यही बात हमारी ज़िंदगी भर भी लागू होती है। युवा जीवन भी एक नए शहर जैसा ही तो है, सपनों से भरा, अवसरों से भरा, लेकिन कई बार उलझनों से भी भरा।
1: बिल्कुल, और मंजिलें तो बड़ी बड़ी होती है लेकिन रास्ते हमेशा साफ नहीं होते। ऐसे में ज़रूरत है तो एक ऐसे इंसान की जो हमें सही दिशा दिखाए।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वसुंधरा
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त गीता, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
0: दोस्तों, आज का विषय है युवा जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका। एक ऐसा विषय जो शायद हर युवा की कहानी से जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल, क्योंकि युवा होना सिर्फ उम्र का पड़ाव नहीं बल्कि फैसलों का दौर भी है। करियर चुनना अपनी पहचान

0: आसान हो जाता है।
1: और दोस्तों यही बात हमारी जिंदगी भर भी लागू होती है। युवा जीवन भी एक नए शहर जैसा ही तो है, सपनों से भरा, अवसरों से भरा, लेकिन कई बार उलझनों से भी भरा।
0: बिल्कुल, और मंजिलें तो बड़ी बड़ी होती है लेकिन रास्ते हमेशा साफ नहीं होते। ऐसे में ज़रूरत है तो एक ऐसे इंसान की जो हमें सही दिशा दिखाए।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वसुंधरा
0: और मैं हूँ आपकी दोस्त गीता, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
1: दोस्तों, आज का विषय है युवा जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका। एक ऐसा विषय जो शायद हर युवा की कहानी से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल, क्योंकि युवा होना सिर्फ उम्र का पड़ाव नहीं बल्कि फैसलों का दौर भी है। करियर चुनना, अपनी पहचान बनाना, असफलताओं से लड़ना और सपनों को सच करना, हर कदम पर सही मार्गदर्शन की जरूरत होती ही है।
1: और अक्सर लोग सोचते हैं कि मार्गदर्शक यानी सिर्फ शिक्षक, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है गीता?
0: बिल्कुल नहीं, मार्गदर्शक तो कोई भी हो सकता है। माता पिता भी हो सकते हैं, बड़ा भाई या बहन भी हो सकते हैं, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई वरिष्ठ साथी भी, तो कोई प्रशिक्षक या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अनुभव हमें सही दिशा दे सकते हैं।
1: और आज के समय में जानकारी की कोई कमी नहीं है दोस्तों, एक क्लिक पर हजारों वीडियो और लाखों सलाह मिल जाती है।
0: लेकिन जानकारी और मार्गदर्शन में बहुत अंतर होता है वसुंधरा। जानकारी तो विकल्प देती है जबकि मार्गदर्शन सही विकल्प चुनना सिखाती है।
1: और यही वजह है दोस्तों कि कई बार बहुत प्रतिभाशाली युवा भी सिर्फ सही दिशा ना मिलने के कारण अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
0: और वहीं एक साधारण सा विद्यार्थी भी सिर्फ मार्गदर्शन पाकर असाधारण सफलता हासिल कर लेता है।
1: गीता, मुझे हमेशा लगता है कि मार्गदर्शक हमारी जगह चल नहीं सकते,
0: लेकिन हमें गिरने से पहले तो संभलना जरूर सिखा सकते हैं ना।
1: और आज के युवाओं की एक और बड़ी चुनौती है,
0: अच्छा,
1: दूसरों से तुलना।
0: सोशल मीडिया खोलते ही लगता है कि हर कोई हमसे ज्यादा सफल है। किसी का रिजल्ट तो किसी की नौकरी, किसी का स्टार्टअप तो किसी की विदेश यात्रा।
1: और ऐसे में युवाओं को फोमो होने लग जाता है और फिर वही शुरू हो जाते हैं कि शायद मैं पीछे रह गया हूँ।
0: और ऐसे में एक अच्छा मार्गदर्शक हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। सक्सेस की कोई एक तय समय सीमा होती ही नहीं।
1: सही कहा, कोई 20 साल की उम्र में सफल होता है, कोई 30 में, कोई 40 में। मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है सही दिशा दोस्तों।
0: और दिशा वही दिखा सकता है जिसने रास्ते देखे हैं।
1: बिल्कुल, एक बात बताओ गीता, क्या कभी आपकी जिंदगी में किसी एक छोटी सी सलाह ने बड़ा बदलाव किया है?
0: बिल्कुल, पता है एक बार तो क्या हुआ कि मैं एक कॉम्पिटिशन में हार गई थी और उस टाइम ऐसा लगा था कि अब दोबारा कोशिश ही नहीं करूंगी। तभी मेरी टीचर मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि देख, हार तेरी पहचान नहीं, तेरी तैयारी का एक नया चैप्टर है। बस बस वही बात आज तक याद है मुझे।
1: वाह, कितनी सुंदर बात कही तुम्हारी टीचर ने। कई बार एक वाक्य इंसान की पूरी सोच बदल देता है।
0: लेकिन क्या करें, ये जो मार्गदर्शक की ताकत है वो होती ही ऐसी है। वो हमारी क्षमता पहचान लेता है, और तब भी जब हम खुद अपनी क्षमता पहचान नहीं पाते हैं।
1: लेकिन गीता, आजकल एक नई समस्या और है।
0: अच्छा,
1: हर कोई सलाह देने के लिए तैयार रहता है।
0: ये सही कहा तुमने, क्योंकि बिना मांगे सलाह देने वालों की संख्या तो ऐसी है मानो सोशल मीडिया के कमेंट से भी ज्यादा हो।
1: और मजेदार बात ये कि कुछ लोग 5 मिनट की रील देखकर खुद को लाइफ कोच घोषित कर देते हैं।
0: इसीलिए तो हम युवाओं को ये भी सीखना होगा कि किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। आखिर हर सलाह मार्गदर्शन नहीं होती ना।
1: इसलिए मैं तो कभी कभार बेवजह सलाह देने वालों को बोल देती हूँ कि भाई सलाह नहीं, सहयोग कर दे। वैसे सही मार्गदर्शक वही होता है जो हमें सोचने की आज़ादी दे, ना कि हमारे फैसले खुद लेने लगे।
0: वो हमारे सपनों का सम्मान करता है और हमें अपनी पहचान बनाने के लिए मोटिवेट करता है।
1: कई बार मार्गदर्शक हमारी सफलता पर जितना खुश होता है,
0: उतना ही हमारी गलती पर ईमानदारी से टोकता भी है, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शक सिर्फ तारीफ नहीं करता, वो उसे सुधारता भी है।
1: मुझे लगता है कि जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शक मिलता सौभाग्य है।
0: और अगर ऐसा कोई मिल जाए तो उसकी सीख को जीवन में अपनाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है।
1: लेकिन अगर किसी को अभी तक कोई मार्गदर्शक नहीं मिला हो तो क्या करें?
0: तो एक अच्छी किताब पढ़िए, प्रेरणादायक लोगों की जीवनी पढ़िए, अनुभवी लोगों से बातचीत कीजिए और सबसे ज़रूरी, सीखने की ये जो आदत है उसे कभी मत छोड़िए।
1: क्योंकि सीखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता दोस्तों, हर अनुभव उसका शिक्षक बन जाता है।

0: लगता है।
1: और याद रहे कि मार्गदर्शन मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ये तो हमारी परिपक्वता की निशानी है।
0: आज आप किसी से सीख रहे हैं और कल शायद कोई आपसे सीख रहा होगा, इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों का सम्मान कीजिए जो आपको बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
1: बिल्कुल, और जब भी ऐसा कोई अवसर आए ना दोस्तों कि किसी और की राह में रोशन किया जाए तो कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि एक दीपक है उसी से ही तो हजारों दीप जल सकते हैं।
0: तो दोस्तों याद रखिए, सपनों को उड़ान मेहनत देती है,
1: लेकिन सही दिशा एक सच्चा मार्गदर्शक ही दे पाता है।

तो दोस्तों अब बारी है आपके और हमारे पसंदीदा सेगमेंट क्विज सेक्शन की, जिसमें हम आपसे पूछेंगे दो सवाल। और आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस संकटग्रस्त पक्षी की संख्या पर नई रिपोर्ट चर्चा में रही। मैं अपना सवाल दोहराती हूँ, हाल

0: थीम है किस संकटग्रस्त पक्षी की संख्या पर नई रिपोर्ट चर्चा में रही।
1: और दूसरा प्रश्न है कि पिछले सप्ताह भारत में किस महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांक के बढ़ने की खबर चर्चा में रही। प्रश्न दोहराती हूँ कि पिछले सप्ताह भारत में किस महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांक के बढ़ने की खबर चर्चा में रही। तो दोस्तों इनके जवाब सोच के रखिएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपसे इनके जवाब जरूर मांगेंगे।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: दोस्तों जरा अपनी आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके सामने दूर दूर तक फैली सफेद बर्फ है, हवा इतनी शुद्ध कि हर सांस नई ऊर्जा भर दे, और सामने खड़े हों ऐसे विशाल पर्वत जिन्हें देखकर शब्द भी छोटे पड़ जाए। नहीं, मैं हिमालय की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों।
1: बिल्कुल, क्योंकि बात यहाँ हो रही है यूरोप के उस अद्भुत पर्वत माला की। तो दोस्तों चलिए सैर करते हैं वहाँ की, जिसने सदियों से यात्रियों, वैज्ञानिकों, कलाकारों और रोमांच प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित किया। स्वागत है आपका आल्प्स पर्वत की दुनिया में।
0: गीता, अक्सर हम सोचते हैं कि दुनिया के सबसे चर्चित पर्वत सिर्फ हिमालय ही होंगे, लेकिन आल्प्स भी अपनी सुंदरता, इतिहास और रोमांच के कारण किसी से कम नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा, आल्प्स पर्वतमाला लगभग 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है और ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ना जाने कितने ही देशों को एक दूसरे से जोड़ती है। यानी एक पर्वतमाला लेकिन अनेक संस्कृतियों का संगम।
0: सोचिए अगर कोई सड़क ऐसी हो जहाँ हर कुछ घंटों में भाषा बदल जाए, भोजन बदल जाए और संस्कृति भी बदल जाए, लेकिन साथ में चलते रहे वही बर्फ से ढके पर्वत, कितना अद्भुत अनुभव होगा दोस्तों।
1: और यही तो कारण है कि हर साल लाखों पर्यटक आल्प्स की ओर खींचे चले जाते हैं। कोई ट्रैकिंग के लिए जाता है, कोई फोटोग्राफी के लिए, तो कोई सिर्फ प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताने के लिए जाता है।
0: वैसे युवाओं की बात करें तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आल्प्स किसी सपने से कम नहीं। स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग, हर रोमांच यहाँ आपका इंतजार करता है।
1: लेकिन सिर्फ रोमांच ही क्यों, ये तो प्रकृति संरक्षण का एक बहुत बड़ा संदेश भी है।
0: बिल्कुल,
1: इन पर्वतों की बर्फ यूरोप की कई प्रमुख नदियों का स्रोत है। यदि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघलते हैं तो इसका असर करोड़ों लोगों पर जो पड़ता है।
0: और यही वजह है कि आल्प्स को सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं बल्कि यूरोप का जल भंडार भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से निकलने वाला पानी खेती, उद्योग और लोगों के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
1: और क्या आपको पता है कि आल्प्स में रहने वाले लोग सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीते आए हैं। उनके घरों की बनावट, खेती के तरीके और जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होती है।
0: गीता, मुझे लगता है कि आज के युवाओं के लिए यही सबसे बड़ी सीख है, विकास जरूरी है लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं।
1: बिल्कुल, आखिर सोशल मीडिया पर खूबसूरत जगहों की तस्वीरें पोस्ट करना तो आसान है, लेकिन उन जगहों को सुंदर बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है उनको निभाना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है।
0: चलो गीता, तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर तुम्हें आल्प्स जाने का मौका मिले तो सबसे पहले तुम क्या करोगी?
1: तो सबसे पहले तो मैं सूर्योदय देखना चाहूंगी। कहते हैं कि जब सुबह की पहली किरण बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है

0: लगता है कि मानो पहाड़ों ने सुनहरी चादर ओढ़ ली। और हाँ, ये भी है कि मैं पिक्चर्स बहुत क्लिक करूंगी।
1: ये तो मुझे पता था, लेकिन मेरी पहली इच्छा होगी कि वहां की शांत वादियों में कुछ देर बिना मोबाइल के बैठना। कभी-कभी सबसे अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रकृति के साथ होती है, इंटरनेट के साथ नहीं
0: क्या
1: दोस्तों।
0: बात कही तुमने, ये तो हम सब युवाओं को याद रखनी चाहिए कि असली सुकून स्क्रीन की रोशनी में नहीं बल्कि प्रकृति की हरियाली और खुली हवा में है।
1: दोस्तों, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी मॉन्ट ब्लांक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4,800 मीटर से अधिक है। ये पर्वतारोहियों के लिए एक बड़ी चुनौती और उपलब्धि दोनों मानी जाती है।
0: लेकिन वहां चढ़ाई करने के लिए सिर्फ साहस ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण, अनुशासन और सुरक्षा नियमों का पालन भी बहुत जरूरी है। रोमांच का मतलब लापरवाही करना कभी नहीं होता
1: और
0: है।
1: ये बात जीवन पर भी लागू होनी चाहिए दोस्तों। बड़ी मंजिलें पाने के लिए शॉर्टकट नहीं बल्कि धैर्य, यानी कि पेशेंस, तैयारी और लगातार मेहनत चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा, शायद इसी वजह से पर्वत हमें हमेशा प्रेरित करते हैं कि वे ऊंचे हैं लेकिन अहंकारी नहीं, विशाल है लेकिन शांत है, और अटल है लेकिन जीवन देने वाले भी है।
1: दोस्तों, दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, प्रकृति हमारे सबसे बड़े शिक्षक रहेगी। आज समय सिखाते हैं कि सुंदरता और शक्ति दोनों को आधार संतुलन है।
0: और अगर कभी आपको आल्प्स जाने का अवसर मिले तो दोस्तों सिर्फ पर्यटक बनकर नहीं जाइए, वहाँ की संस्कृति, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के जीवन को समझने की कोशिश भी कीजिएगा।
1: क्योंकि दोस्तों, यात्रा केवल नई जगह देखने का नाम नहीं बल्कि नई सोच अपनाने का भी नाम है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी बर्फ के से ढके पर्वत की तस्वीर खींचे तो सिर्फ उसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे प्रकृति, विज्ञान, इतिहास और पर्यावरण के महत्व को भी याद कीजिएगा।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: गीता, पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं इस स्टूडियो की ओर आती हूँ तो शहर की गगनचुंबी इमारतों को देखकर मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। हम आज जिन चमचमाती सड़कों और कॉलोनी में रहते हैं, क्या कभी सोचा है कि आज से हजारों साल बाद जब कोई यहाँ खुदाई करेगा तो उसे हमारे बारे में क्या मिलेगा?
3: और हम सोचते हैं कि हमने तरक्की की हर सीमा को पार कर लिया। हर तरफ एक अजीब सा कंपटीशन है, किसकी सोसाइटी कितनी बड़ी है, किसका आर्किटेक्चर कितना मॉडर्न है, लेकिन हजारों साल बाद की बात ये तो कोई सोचता ही नहीं।
2: दोस्तों, रेगिस्तान की तपती धूप में ऊंटों की सवारी करते हुए खोई हुई सभ्यता को ढूंढ निकालना, ये तो सचमुच जुनून की बात है।
3: और राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले में उस शांत और ऐतिहासिक टीले की बात करें तो वो दिव्य है, जिसे दुनिया कालीबंगा के नाम से जानती है। दोस्तों, कालीबंगा यानी कि काली चूड़ियाँ। अगर हम कालीबंगा की खोज के इतिहास के पन्नों को पलटे तो इसकी कहानी होती है शुरू साल 1952 में। आज़ादी के ठीक कुछ साल बाद क्या वो दौर जब भारत के महान पुरातत्वविद अमलानंद घोष राजस्थान के इस मरुस्थली इलाके में सर्वे कर रहे थे।
2: बिल्कुल गीता, तो दोस्तों दरअसल उस समय भारत के पुरातत्व विभाग यानी कि ASI के सामने एक बड़ी चुनौती थी। विभाजन के बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य साइट्स पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी। भारतीय पुरातत्वविद ये मानकर चल रहे थे कि इस प्राचीन सभ्यता के तार भारत की धरती पर भी कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं। अमलानंद घोष जी ने पुरानी सरस्वती नदी के सूखे पाट के किनारे किनारे पैदल और ऊँटों पर यात्रा करते हुए सर्वेक्षण शुरू किया। तभी हनुमानगढ़ के पास उन्हें मिट्टी के ये बड़े बड़े टीले दिखे, जहाँ बिखरी हुई काली चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन और प्राचीन ईंटें साफ गवाही दे रही थी कि यहाँ नीचे कोई महान सभ्यता सोई हुई है। इस तरह 1952 में अमलानंद घोष जी ने कालीबंगा की खोज की।
3: बिल्कुल, तो दोस्तों बात यह है कि खोज तो 1952 में हो गई थी, लेकिन इस जमीन के सीने में जो छिपा राज है उसको पूरी तरह बाहर आने में थोड़ा वक्त लगा। इसके बाद साल 1961 से लेकर 1969 तक यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर व्यापक उत्खनन यानी खुदाई का काम चला। तब जाकर 5000 साल पुराना ये जो सुनियोजित शहर है वो दुनिया के सामने अपनी पूरी भव्यता के साथ प्रकट हुआ।
2: अब आज की इस अंधी दौर में सोचते हैं कि टाउन प्लानिंग, अच्छे मकान और सलीके की जिंदगी सिर्फ आज के इंसान की देन है, लेकिन कालीबंगा का नाम आते ही याद आता है दोस्तों कि जब दुनिया ठीक से जीना भी नहीं जानती थी तब हमारे पूर्वज वहाँ पक्की ईंटों के घरों में समानांतर चौड़ी सड़कों पर और एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम के साथ रहते थे।
3: यही तो समझने वाली बात है कि आज की इस कंक्रीट वाली लाइफ में हम जरा सा पानी बरसने पर वाटर लॉगिंग से परेशान हो जाते हैं, सड़कों पर जाम लग जाता है और हम खुद को सबसे एडवांस कहते हैं। लेकिन कालीबंगा के इस दौर को देखें तो वहाँ ग्रीड पैटर्न पर सड़कें बनी थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कचरा डालने की

0: ये भी दोस्तों सड़कों पर बकायदा डस्टबिन होते थे और घरों का गंदा पानी बाहर निकालने के लिए लकड़ी और ईंटों की ढकी हुई नालियां थी। ये क्या दिखाता है?
1: ये दिखाता है कि उनके पास सिर्फ रफ्तार नहीं थी गीता, उनके पास ठहराव और व्यवस्था की समझ थी जिसे हम आज भूल चुके हैं। लोग प्रकृति से लड़ नहीं रहे थे बल्कि प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे।
0: और सिर्फ इतना ही नहीं, कालीबंगा की खुदाई में मिली अग्निकुंड या हवन कुंड इस बात का सबूत है कि वे जितने व्यवहारिक थे उतने ही आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध भी थे। कालीबंगा के लोग अपने रोजमर्रा के व्यापार और किसानी जिंदगी के बीच में उस आत्मिक शांति के लिए वक्त निकालते थे। वे जानते थे कि बाहरी तरक्की तब तक अधूरी है जब तक भीतर का आंगन शांत न हो।

0: पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: वसुंधरा, आज की इस भाग दौड़ और कंपटीशन वाली लाइफ में हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि परिस्थितियां हमारे खिलाफ है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब इंसानी हौसला एक साथ मिलकर खड़ा होता है तो दुनिया की

0: बड़ी से बड़ी ताकत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, और जब एकजुट फैसले की बात आती है तो भारत की इतिहास का एक ऐसा पन्ना सामने आता है जिसके बारे में वैसे तो देश का बच्चा बच्चा जानता है, स्कूल की किताबों में सबने पढ़ा है, भारत छोड़ो आंदोलन।
0: बिल्कुल, और दोस्तों ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है मानो बदन में एक अजीब सी सिरहन सी हो रही है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
1: यही तो खूबी है इतिहास की गीता। इसे अगर सिर्फ तारीखों की तरह रटोगे तो ये बोरिंग लगेगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर इसके पीछे की इंसानी भावना और उस नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड को समझोगे तो ये आपके भीतर एक नई आग लगा देगा।
0: बिल्कुल वसुंधरा। तो दोस्तों तारीख थी 8 अगस्त 1942, मुंबई का ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे आज हम सब क्रांति मैदान के नाम से पूछते हैं, वहीं पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस आंदोलन का बुगुल फेंका था। और अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त से ये पूरे देश में एक ज्वालामुखी की तरह फैल गया था।
1: बिल्कुल सही। लेकिन गीता, अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर इसकी नौबत क्यों आई? अंग्रेजों के खिलाफ तो पहले भी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुके थे।
0: हाँ वसुंधरा, ये सवाल जरूरी भी है।
1: फिर अचानक 1942 में ऐसा क्या मेन रीजन बना कि गांधी जी जैसे शांत और अहिंसक इंसान को भी कहना पड़ा करो या मरो, यानी कि डू और डाई?
0: क्योंकि गांधी जी जो हमेशा धैर्य और शांति की बात करते थे, उन्होंने अचानक इतना बड़ा और आक्रामक नारा क्यों दिया?
1: गीता, इसके पीछे 2-3 बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कारण थे। उस वक्त दुनिया में 2रा विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेज भारत को बिना उसकी मर्जी के इस युद्ध में झोंक चुके थे। भारत में महंगाई चरम पर थी, अनाज की कमी हो रही थी और जनता त्रस्त थी।
0: और भारतीयों का सब्र का बांध टूट चुका था। यह आंदोलन इसलिए जरूरी था क्योंकि अब बात सिर्फ कुछ रियायतों की नहीं, बात देश की पूरी संप्रभुता की थी। गांधी जी ने तो साफ कह दिया कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ कि करो या मरो, यानी या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी पूरी जान दे देंगे। जरा सोचो उस दौर के माहौल की कल्पना करो। जैसे ही दोस्तों 9 अगस्त की सुबह हुई तो अंग्रेजों ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाकर गांधी जी, नेहरू जी समेत देश के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था।
1: यानी आंदोलन शुरू होते ही सारे मुख्य कमांडर जेल के अंदर। आमतौर पर तो ऐसी स्थिति में कोई भी टीम या कोई भी आंदोलन बिखर जाता है, लोग डरकर अपने घरों में दुबक जाते हैं, लेकिन यही तो इस आंदोलन का सबसे खूबसूरत और जादुई मोड़ शुरू होता है। दोस्तों यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत थी, ये नेतृत्व विहीन आंदोलन बन गया, यानी देश का हर एक नागरिक, हर कोई खुद को अपने देश का नेता मानने लगा।
0: वाह, क्या गजब की सेल्फ मोटिवेशन रही होगी ना दोस्तों। आज साल 2026 है तो इसमें भी ये जो आंदोलन है इसकी प्रासंगिकता रत्ती भर कम नहीं हुई। आज हमें किसी बाहरी दुश्मन को देश से भगाने के लिए नहीं लड़ना है, लेकिन हाँ अपने भीतर के दुश्मनों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा बुलंद करना है।
1: कितनी अद्भुत और गहरी बात कही तुमने। यानी भारत छोड़ो आंदोलन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि अपने डर पर फतेह पाने का, विपरीत हालातों में भी मुस्कुराते हुए खड़े रहने का और खुद अपनी तकदीर का लेखक बनने का एक जीवंत मंत्र है। क्यों दोस्तों, है ना आज की शाम ऊर्जा से भरपूर।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों ये जो जिंदगी है उसमें ऐसा लगता है कभी कभी कि सारे रास्ते बंद हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और हम अकेले पड़ गए हैं। तो आंखें बंद करके 1942 के उस आम हिंदुस्तानी के जज्बे के बारे में सोचेगा, उसको महसूस कीजिए, जिसके पास ना तो सोशल मीडिया था, ना गाड़ियां थी, ना पैसा था, था तो सिर्फ एक अटूट हौसला और देश को आजाद देखने का हसीन सपना। जब वो जीत सकता है तो हम और आप अपनी जिंदगी की किसी भी लड़ाई में कैसे हार सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत

0: हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं, मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: गीता, कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो हमारा पूरा जीवन है ना, ये ताश के पत्तों के उस महल जैसा है जिसे हम बहुत चाव से बनाते हैं। हवा का एक छोटा सा झोंका आता है और वो पूरा महल एक पल में ढह जाता है। हम असहज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सब बिखर गया है।
1: बिल्कुल सच है, हम सब अपने जीवन में एक स्थिरता, एक संतुलन चाहते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी में कब कहाँ से जिम्मेदारियाँ और कामों का झोंका आ जाए कोई नहीं जानता। नतीजा ये होता है कि दिन खत्म होते होते हम पूरी तरह थक चुके होते हैं और दिमाग में एक अजीब सा तनाव होता है और मन में ये मलाल कि आज का दिन भी हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल गया।
0: बिल्कुल गीता, और इसी बिखराव से बचने के लिए, उस ताश के महल को एक मजबूत इमारत में बदलने के लिए, हमें जीवन जीने की एक बहुत ही बुनियाद कला को सीखना होगा। हर रोज

0: प्लानिंग करें।
1: क्या बात कही, सही कहा दोस्तों कि प्लानिंग, प्लानिंग शब्द सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि यार ये तो ऑफिस के मैनेजरों का काम है, हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जैसे दिन आएगा वैसे जी लेंगे। लेकिन सच कहे तो जो लोग बिना प्लानिंग के जीते हैं उनका दिन उन्हें चलाता है, जबकि जो प्लानिंग करते हैं वे अपने दिन को अपने तरीके से खुद चलाते हैं।
0: असल में रोजाना की प्लानिंग करना कोई बंधक बनना नहीं, बल्कि ये तो खुद को आज़ाद करने की कला है। जब आप हर रात सोने से पहले या सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट अपने पूरे दिन को पेपर पर उतार लेते हैं, तो आपके दिमाग का आधा बोझ वहीं कम हो जाता है। हमारे दिमाग की एक सीमा है, वो नए आइडियाज़ पैदा करने के लिए बना है, सारे कामों की लिस्ट को याद रखकर स्टोरेज बॉक्स बनने के लिए नहीं।
1: बिल्कुल सही, जब हम कामों को सिर्फ दिमाग में रखते हैं तो एक मेंटल क्लटर यानी कि दिमागी कचरा बन जाता है। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, लेकिन जब हम उसे एक डायरी या ऐप में लिख लेते हैं तो दिमाग शांत हो जाता है। और वसुंधरा, सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि प्लानिंग करने से एक ही दिन में हमारे सारे काम बिना किसी हड़बड़ाहट के पूरे भी हो सकते हैं।
0: बिल्कुल गीता, जब आपके पास एक टू डू लिस्ट यानी हमें आगे क्या करना है उसकी लिस्ट होती है, तो आपको पता होता है कि कौन सा काम सबसे ज़रूरी है, यानी कि कौन सा काम प्रायोरिटी पे है और किसे बाद में किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: आप अपना वक्त सोशल मीडिया पर बेवजह बर्बाद नहीं करते, आपको पता होता है कि किस काम को कितना समय देना है, इससे वक्त की बर्बादी रुकती है और दिन के अंत में आपको एक अद्भुत संतुष्टि मिलती है कि वाह, आज का दिन पूरी तरह वसूल रहा।
1: और सिर्फ काम ही क्यों, सबसे बड़ा फायदा तो हमारी हेल्थ को होता है। दोस्तों आज के दौर में लोग कहते हैं कि मेरे पास जिम जाने का वक्त नहीं है, योग करने का टाइम नहीं मिलता और ढंग से खाने खाने की फुर्सत नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो वक्त की कमी नहीं बल्कि मैनेजमेंट की कमी है। प्लानिंग की मदद से हम अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी बेहतरीन ध्यान रख सकते हैं।
0: बिल्कुल पते की बात कही तुमने गीता, जब आप अपने दिन को प्लान करते हैं तो आप केवल काम को प्लान नहीं करते बल्कि आप अपने लिए मी टाइम भी प्लान करते हैं। आप सुबह के 20 मिनट वॉक या मेडिटेशन को फिक्स कर सकते हैं, आप अपने खाने का समय तय कर सकते हैं ताकि आप हड़बड़ाहट में जंक फूड ना खाएं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जब आपके काम वक्त पर पूरे होते हैं तो आपको रात को एक गहरी और सुकून भरी नींद आती है, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़ी थेरेपी है।
1: सचमुच प्लानिंग हमें रिएक्टिव मोड से प्रोडक्टिव मोड में ले जाता है। हर परिस्थिति को हाथों की कठपुतली नहीं बनकर हम अपनी जिंदगी को खुद डायरेक्ट करते हैं, तनाव अपने आप गायब हो जाता है और हमें पता होता है कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं ना कि चीज़ें हमें।
0: पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये आदत बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आज आकाशवाणी के इस मंच से हम आपसे बस यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आज रात को सोने से पहले अपनी डायरी उठाइए या अपने फ़ोन का नोटपैड खोलिए

0: तो दोस्तों, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे पूछे थे दो सवाल। अब समय हो गया है उन सवालों के उत्तर देने का। तो आज का हमारा पहला सवाल था, हाल ही में किस संकटग्रस्त पक्षी की संख्या पर नई रिपोर्ट चर्चा में रही? और इसका सही उत्तर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गुडावन।
1: और दूसरा क्वेश्चन था कि पिछले सप्ताह भारत में किस महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांक के बढ़ने की खबर चर्चा में थी? तो इसका जवाब है खुदरा महंगाई दर। तो दोस्तों, अब समय है रोजगार सूचना का। तो आपको बता देते हैं कि आरपीएससी ने साल 2026 में एपीओ की पोस्ट जारी की गई है, जिसमें योग्यता है कि एलएलबी में डिग्री होनी चाहिए और इसकी अंतिम तिथि है आवेदन की 19 जुलाई 2026।
0: तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। इसी के साथ मैं थी आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त वसुंधरा,
1: और मैं हूँ गीता।
0: नमस्कार।

युवा श्रोता अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, आज रात 10 बजे सुनिएगा आपके ही पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। समय है रात 10 बजे। सुगम संगीत के अंतर्गत चंद गजलें सुनिएगा रात 9:30 पर और फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं रात 9:15 पर।

लोक संगीत सुनिएगा रात 8:30 पर और फिल्म संगीत का समय है रात 8:00। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं संध्या 7:45 पर।

ग्रामीण श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण जगत होगा संध्या 7 बजे। कार्यक्रम में कई चर्चाएं की जाएगी। पहली है क्षारीय भूमि वाले खेतों में मृदा उपचार। दूसरी है मानसून में मौसमी बीमारियों से बचाव, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और गांवों में स्वरोजगार के विकल्प। इन सब विषयों पर आपके साथ चर्चा होगी, जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण श्रोता ग्रामीण जगत कार्यक्रम के अंतर्गत लोक गीत और लोक भजन भी सुन सकेंगे।

ये तो था हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: आज नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा

0: इराकी विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
1: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उस सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पे जो भी हमला हुआ है, वो सबसे ज्यादा नाविकों की हमारे देश की लोगों की जान गई है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जल डमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर 0 शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उन्हें कर्नाटक में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 32वें ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही संगीतकार। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सलिल चौधरी के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत जो अभी आपने चुना मन्ना डे के स्वर में था, फिल्म का नाम काबुलीवाला था और इस गीत को संगीत से सजाया था सलील चौधरी ने। 19 नवंबर 1922 को जन्मे सलील चौधरी भारतीय सिनेमा के महानतम संगीतकारों, गीतकारों, कवियों और कहानीकारों में से एक थे। प्यार से सलील दा उन्हें कहा जाता था। हिंदी, बांग्ला, मलयालम सहित 13 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया और भारतीय फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका जन्म

वर्तमान दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल के गाजीपुर नामक स्थान पर हुआ था। बचपन का ज्यादातर समय असम के चाय बागानों में बीता, जहां उनके पिता चिकित्सक थे। बचपन से ही सलील दा को भारतीय लोक संगीत और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत सुनने का अवसर मिला, जिससे उनकी संगीत शैली को गहराई से प्रभावित किया। कोलकाता के बंगबासी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। छात्र जीवन में वे सामाजिक आंदोलनों और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े और बाद में भारतीय जन नाट्य संघ IPTA के सक्रिय सदस्य भी बने।

अभी जो गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था पूनम की रात और स्वर था लता मंगेशकर का, संगीत था सलील चौधरी का। हम बात कर रहे थे सलील चौधरी के जीवन सफर के बारे में। श्रोताओं, सलील चौधरी ने अपने कैरियर की शुरुआत बांग्ला संगीत से की। हिंदी फिल्मों में उन्हें बड़ी पहचान बिमल रॉय की फिल्म दो बीघा जमीन 1953 से मिली। इसके बाद उन्होंने अनेक कालजयी फिल्मों में संगीत दिया। दो बीघा जमीन के अलावा मधुमति, परख, काबुलीवाला, आनंद, रजनीगंधा, छोटी सी बात और मेरे अपने जैसी हिट फिल्मों में उन्होंने अपना संगीत दिया। मलयालम फिल्म चेम्मीन जो 1965 में आई थी, उसका संगीत भी सलील चौधरी ने दिया था और वो भी काफी पॉपुलर हुआ था। उनके द्वारा संगीतबद्ध किए कई फिल्मी गाने हैं जो आज भी सुने जाते हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीं, आजा रे परदेसी, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जिंदगी कैसी है पहेली, ना जिया लागे ना, और कई बार यूं भी देखा है। इनमें से कुछ गीत हम आपको इस कार्यक्रम में भी सुनवाएंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा का अद्भुत मिश्रण सलील चौधरी द्वारा संगीतबद्ध किए गए फिल्मी नगमों में सुनने को मिलता है। उन्होंने जटिल धुनों को भी सरल और मधुर रूप में प्रस्तुत किया। बांसुरी, पियानो और इसराज सहित कई वाद्य यंत्रों में वो दक्ष थे। उनके गीतों में सामाजिक संवेदना, प्रकृति और मानवीय भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

सली चौधरी को फिल्म मधुमति के लिए 1958 में जो आई थी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार मिला। दो बीघा जमीन और चेम्मीन जैसी फिल्मों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सम्मान मिला। उनकी पत्नी प्रसिद्ध गायिका सबिता चौधरी थी। पुत्री अंतरा चौधरी भी एक जानी मानी गायिका और संगीतकार है। 5 सितंबर 1995 को कोलकाता में उनका निधन हुआ और वे अपने पीछे भारतीय फिल्म संगीत की एक अमूल्य विरासत छोड़ गए।

सलील चौधरी भारतीय फिल्म संगीत के उन विरले संगीतकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने धुन, कविता और ऑर्केस्ट्रेशन तीनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया। उनके गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने अपने समय में थे, और नई पीढ़ी के संगीतकार भी उनकी रचनात्मकता से प्रेरणा लेते हैं।

फिल्म का नाम था रजनीगंधा, स्वर था मुकेश का और संगीत था सलील चौधरी का। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। आज के संगीतकार थे सलील चौधरी। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान विधानसभा गठन के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में कल से अमृत महोत्सव की शुरुआत। साल भर कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राज्य में शादी, धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब केवल वैध लाइसेंसधारी हलवाई और कैटरर ही सेवाएं दे सकेंगे। प्रदेश भर की सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की सघन स्क्रीनिंग के लिए कल से विशेष अभियान चलाया जाएगा और राज्य के सभी 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर हुई अभिभावक कार्यकर्ता बैठक में बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से अमृत महोत्सव की शुरुआत होगी। उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का समापन सत्र में शिरकत का कार्यक्रम है। उत्सव में राज्य के लोकतांत्रिक विकास, ऐतिहासिक कानूनों, संसदीय परंपराओं और डिजिटल विधानसभा के भविष्य पर मंथन होगा। वहीं

0: और पूर्व विधायकों का समागम रहेगा। अमृत उत्सव के तहत साल भर तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसका समापन अगले साल राजस्थान स्थापना दिवस पर होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि समारोह में 6 और उससे अधिक बार रहे पूर्व विधायकों का सम्मान भी किया जाएगा।
1: 1952 में पहली बार चुनाव हुए और ये 16वीं विधानसभा है, तो इस 16वीं विधानसभा तक जो भी विधायक अभी हमारे बीच में है उन सबको इसमें सादर आमंत्रित किया है कि जो 6 बार से अधिक विधायक रहे ऐसे लगभग 26 लोग हैं जिनका सम्मान भी हम लोग करेंगे और उनके सम्मान के साथ साथ जो आज तक अध्यक्ष रहे जो उनका भी सम्मान समारोह होगा। इस तरह कुल मिला के 33 लोगों का उधर सम्मान किया जाएगा।
0: प्रदेश में शादी ब्याह धार्मिक आयोजनों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब केवल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के वैध लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन वाले हलवाई कैटरर्स और भोजन सेवा प्रदाता ही अपनी सेवाएं दे सकेंगे। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से इसके लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया SOP के तहत ये व्यवस्था लागू की गई है। इस प्रक्रिया में आयोजन से पहले कैटरर को सारी जानकारी संबंधित अधिकारी को देनी होगी। SOP के तहत सभी हलवाइयों और खाद्य व्यवसाय संचालकों का सत्यापन भी किया जाएगा। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त भगवंत सिंह ने बताया कि सभी मैरिज गार्डन विवाह स्थलों और होटलों को भी उनके परिसर में लाइसेंसधारी खाद्य संचालकों से ही खाना तैयार करवाना और परोसना सुनिश्चित करना होगा। बड़े आयोजनों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भोजन की गुणवत्ता भंडारण और पेयजल व्यवस्था का भी जायजा लेंगे।
2: सामूहिक भोज का कार्यक्रम होता है, विवाह सम्मेलन हो गए और कोई रिलीजियस फंक्शन होते हैं तो उसमें क्या है कि काफी मात्रा में खाना बनता है और कई बार शिकायतें भी आती है और कई बार एक्चुअल सिचुएशन भी होती है जहाँ फूड पॉइजनिंग के केसेस हो जाते हैं। तो इसको रेगुलेट करने के लिए डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर जारी करे हैं कि आप जो भी इस तरह के फंक्शन में खाना बनवाएंगे तो वो रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए या रजिस्टर्ड हलवाई कैटरर होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा तो उसमें फर्दर उसकी जिम्मेदारी भी हम तय कर पाएंगे और साथ ही जो हमारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट में उसको कार्यक्रम की डिटेल, वो आयोजन स्थल कहाँ पर है, उसका आयोजक का क्या नाम है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ रहेगी तो उससे निश्चित रूप से इस तरह के फूड पॉइजनिंग केसेस को हम मॉनिटर कर पाएंगे। यही हमारे इसके ऑर्डर को इस SOP को जारी करने के पीछे मंशा थी।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा का दौरा निरस्त हो गया है। बरसात और खराब मौसम के कारण इसे रद्द किया गया है। मुख्यमंत्री का प्रागपुरा नगरपालिका में आयोजित शहरी सेवा शिविर में पहुंचने और लाभार्थियों से संवाद का कार्यक्रम था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से संरक्षण कार्य करवाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसे उत्खनन स्थलों और विरासत परिसरों के विकास की डैश योजना में शामिल किया है। इसके तहत ऐतिहासिक इमारत का संरक्षण किया जाएगा, साथ ही म्यूजियम, वॉकवे, हिस्ट्री गैलरी, इंटरप्रिटेशन सेंटर और पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा डिजिटल तकनीक और ऑडियो विजुअल माध्यम से मेवाड़ के इतिहास को प्रस्तुत किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। भारत मंडपम में हो रहे इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टैक्स अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों का भी वस्त्र क्षेत्र को फायदा मिल रहा है।
3: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए, अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर की सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य मानकों की सघन स्क्रीनिंग के लिए कल से विशेष अभियान चलाया जाएगा। 5 दिन तक चलने वाले इस अभियान में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने आज जयपुर में बैठक कर VC के माध्यम

0: से सभी चिकित्सा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर, एएनएम और सीएचओ के जरिए स्क्रीनिंग का ये काम करवाया जाएगा। श्रीमती राठौड़ ने प्रत्येक गर्भवती महिला की 4 गुणवत्तापूर्ण एएनसी जांच अनिवार्य रूप से कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि ज्यादा जोखिम वाली गर्भावस्था के लिए अलग से ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर आज भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी अस्पताल परिसर का जायजा लिया। इसके बाद श्री खेवसर ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जयपुर सीआई टीम ने भीलवाड़ा में हुई प्रसूताओं की मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार मातृ और शिशु स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है।
1: हमारी जयपुर से एक टीम आई, उन्होंने जांच करी, लेकिन हमारे सीनियर लोग और राजस्थान के आए, अब मैं भी आया यहाँ पर। हमने सब चीजों की जांच की है और मैंने कुछ दस्तावेज की मांग करी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और हमने मंगाया और बांसवाड़ा में आज जा रहा हूँ।
0: चिकित्सा मंत्री इसके बाद बांसवाड़ा के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि हाल ही में बांसवाड़ा में भी विभिन्न कारणों से कुछ प्रसूताओं की मृत्यु हुई थी। स्थिति का जायजा लेने के लिए चिकित्सा मंत्री अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी से ऑस्ट्रेलिया के उच्च स्तरीय राजनयिक पॉल मर्फी ने आज लोकभवन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। साथ ही राजस्थान में उच्च शिक्षा, आदिवासी संस्कृति संरक्षण और कृषि में नवाचारों पर भी विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक पर और ब्यौरा न्यूज डेस्क से।
2: राज्यपाल श्री बागड़े की पहल पर राजनयिक श्री मर्फी ने राजस्थान के विश्वविद्यालयों के साथ ऑस्ट्रेलिया के उच्च शैक्षिक कार्यक्रमों के एक्सचेंज की संभावनाओं पर काम करने की सहमति जताई। आने वाले दिनों में राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलगुरु और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षाविदों तथा कुलपतियों के साथ वीसी के जरिए संवाद और चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कम पानी और शुष्क वातावरण में कृषि से जुड़ी पद्धति के बारे में भी राजस्थान को लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में राजस्थान की आदिवासी धरोहर संरक्षण पर भी विशेष विचार विमर्श किया गया। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: प्रदेश के स्कूलों में डिजिटल लर्निंग लैब स्थापित की जाएंगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में ये जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को अध्ययन में सुविधा होगी। मुख्य सचिव पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों की राज्य स्तरीय वेबिनार में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इन लैब से विद्यार्थियों को अध्ययन में सहायता मिलेगी। उन्होंने हर पीएम श्री स्कूल में सुझाव पेटिका लगाने और सफलता की कहानियां साझा करने की बात कही। वेबिनार के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न स्कूलों के नवाचारों और सर्वोत्तम नीतियों को अन्य स्कूलों में भी लागू किया जाएगा।
3: राजस्थान में जो पीएम श्री स्कूल्स के माध्यम से जो एजुकेशन मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं, इनमें कई नेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस आज हमारे सामने आए हैं। ये हम भारत सरकार में सामने भी प्रस्तुत करेंगे और इसी क्रम में अन्य स्कूल्स को भी डेवलप करने के लिए सारे प्रयास, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इसको हम लोग इसी क्रम में और भी वेबिनार आयोजित करेंगे। टॉप परफॉर्मर्स को राज्य के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि वो अपना चैलेंजेस और सक्सेसेस पूरा राज्य में बाकी सब लोग सुन के सीख सकें।
0: प्रदेश के सभी 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पीएएम बैठक आयोजित की गई। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से हर महीने ये बैठक रखी जाती है। समेकित बाल विकास सेवा योजना आईसीडीएस के निदेशक वासुदेव मालावत ने बताया कि बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के माता पिता के साथ स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर चर्चा की गई। मीटिंग में बच्चों के परिवार के पुरुष सदस्यों की सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही बच्चों की गतिविधियों और पोषण सहित अन्य विषयों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गौ मांस उत्पादक देश है। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान विधानसभा गठन के 75 वर्ष के उपलक्ष में कल से अमृत महोत्सव की शुरुआत। साल भर कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राज्य में शादी, धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में आप केवल वैध लाइसेंस

0: में हलवाई और कैटरर ही सेवाएं दे सकेंगे। प्रदेश भर की सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की सघन स्क्रीनिंग के लिए कल से विशेष अभियान चलाया जाएगा और प्रदेश के सभी 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर हुई अभिभावक कार्यकर्ता बैठक में बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से नागौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्याम लाल ने तैयार किया है। जिले में इस बार मॉनसून की शुरुआत देरी से हुई। जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश शुरू होने के बावजूद पूरे जिले में समान वर्षा नहीं हुई। कई क्षेत्रों में खरीफ की फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कृषि विभाग के अनुसार जिले में 8,32,000 हेक्टेयर में खरीफ बुआई का लक्ष्य रखा गया है। इसके मुकाबले अब तक 7,13,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी है। जिले में जुलाई माह के दौरान औसतन 42 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। नागौर की प्रसिद्ध पान मेथी की खेती करने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सोलर ड्रायर पर 40% तक अनुदान देने की योजना शुरू की है। इससे किसान पान मेथी के साथ ही काचरी, टमाटर, मिर्च और अन्य कृषि उत्पादों को स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से सुखा सकेंगे। उद्यानिकी विभाग के अनुसार पात्र किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत लागत का 50% तक अनुदान देने की व्यवस्था की है। उद्यानिकी विभाग के अनुसार किसान विभागीय पोर्टल पर इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से औषधीय खेती को बढ़ावा मिलने और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। बीते दिनों पर्यटन विभाग की टीम ने खींवसर क्षेत्र के भूडेल गांव स्थित लोक देवता वीर हड़बूजी महाराज की जन्मस्थली का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर और आसपास में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शौचालय, पार्किंग, विश्राम स्थल तथा अन्य सुविधाओं के विकास की संभावनाओं का आकलन किया। स्थानीय लोगों से भी सुझाव लेकर आगे की कार्य योजना तैयार की जा रही है। बीते दिनों बालोतरा के पचपदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा HPCL रिफाइनरी के उद्घाटन और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम का नागौर में भी सजीव प्रसारण किया गया। जिला मुख्यालय के टाउन हॉल सहित सभी ब्लॉक मुख्यालयों और ग्राम पंचायत में लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों में चयनित 2047 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। जिले में बीते दिनों राष्ट्रीय सहकार सप्ताह के तहत सहकार संवाद दिवस नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भदवाड़ा में चित्रकला, क्विज, निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में विद्यालय के 120 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से 1 जुलाई को आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार केंद्रीय विद्यालय मेड़ता सिटी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षाओं का संचालन शुरू करने की स्वीकृति दे दी गई है। पहले चरण में विद्यालय में 1 से 5वीं तक की कक्षा का संचालन होगा। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार आगे की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। बीते दिनों नागौर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अमरपुरा के गांव गोल्ला में विकसित भारत जीरामजी योजना का शुभारंभ 111 पौधों का रोपण करके किया गया। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को बढ़ावा देना है। 20वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर कृषि महाविद्यालय नागौर में कार्यशाला आयोजित की गई। भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में आंकड़ों के महत्व, प्रशासनिक डेटा के प्रभावी उपयोग और नीति निर्माण में उनकी भूमिका पर चर्चा हुई। इस अवसर पर SDG स्टेटस रिपोर्ट 2026 जिला और ब्लॉक फोल्डर का विमोचन किया गया। देवस्थान विभाग द्वारा चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के माध्यम से जिले के पात्र वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया। निर्धारित कोटे के अनुसार नेपाल स्थित पशु

पतिनाथ की हवाई यात्रा के लिए 146 और विभिन्न तीर्थ स्थलों की रेल यात्रा के लिए 1,193 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इसी के साथ नागौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: आज री खास खबरां राजस्थान विधानसभा गठन रा 75 बरस रे मौके माथे कालेसुं अमृत महोत्सव री शुरुआत साल भर के खास कार्यक्रमां रो आयोजन वेला राज्य माई शादी धार्मिक आयोजना और सार्वजनिक कार्यक्रम माए अबे केवल वैध लाइसेंस धारी हलवाई और कैटरर ही सेवावां दे सकेला प्रदेश भर री सगली गर्भवती महिला हमारे स्वास्थ्य री सघन स्क्रीनिंग खातिर कालेसुं खास अभियान चलायो जावेला और प्रदेश रा सगला 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रा माथे भी अभिभावक कार्यकर्ता बैठक माए टाबरा रे स्वास्थ्य और शिक्षा माथे चर्चा समाचारा रे साथे मैं संगीता शर्मा और अबे समाचार विगतवार राजस्थान विधानसभा रा 75 बरस पूरा होने रे मौके माथे कालेसुं अमृत महोत्सव री शुरुआत वेली उद्घाटन जलसे माए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भीणा वेला वठीने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समापन सत्र माए भीणा होवन रो कार्यक्रम है। उत्सव माए राज्य रा लोकतांत्रिक विकास ऐतिहासिक कानून संसदीय परंपरावां और डिजिटल विधानसभा रे भविष्य माथे मंथन वेला वठीने मौजूदा और पहली आला विधायकारो समागम रवेला इनरे तहत साल भर ताई खास कार्यक्रमारो आयोजन करो जावेला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बतायो के जलसे माए 6 और 932 दफा लिया पहली आला विधायकारो सम्मान भी करो जावेला।
1: सन 1952 में पहली बार चुनाव हुए और ये 16वीं विधानसभा है, तो इस 16वीं विधानसभा तक जो भी विधायक अभी हमारे बीच में है उन सबको इसमें सादर आमंत्रित किया है कि जो 6 बार से अधिक विधायक रहे ऐसे लगभग 26 लोग हैं जिनका सम्मान भी हम लोग करेंगे और उनके सम्मान के साथ साथ जो आज तक अध्यक्ष रहे जो उनका भी सम्मान समारोह होगा, तो इस तरह कुल मिला के 33 लोगों का उसे सम्मान किया जाएगा।
0: प्रदेश माए शादी ब्याह धार्मिक आयोजना और दूजा सार्वजनिक कार्यक्रम माए अब केवल वैध FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन वाला हलवाई कैटरर्स और भोजन सेवा प्रदाता ही आपरी सेवावा दे सकेला। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण महकमारी कानिसू इनरे खातिर जारी मानक संचालन प्रक्रिया SOP रे तहत आ व्यवस्था लागू करी जी है। इन प्रक्रिया माए आयोजन सू पहला कैटरर कानिसू सारी जानकारी जुड़ियोड़ा अहलकारा ने देवनी वेला SOP रे तहत सगला हलवाइयां और खाद्य व्यवसाय संचालकां रो सत्यापन भी करियो जावेला। महकमारा अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह बतायो कि सगला मैरिज गार्डन विवाह स्थलां और होटला ने भी वाणे परिसर माए लाइसेंस धारी खाद्य संचालकां सुही खानो तैयार करवानो और परोसनो पक्को करनो वेला। बड़ा आयोजन माए खाद्य सुरक्षा अहलकार भोजन री गुणवत्ता भंडारण और पेयजल व्यवस्था रो भी जायजो लेवेला।
2: सामूहिक भोज का कार्यक्रम होता है, विवाह सम्मेलन हो गए और कोई रिलीजियस फंक्शन होते हैं, तो उसमें क्या है कि काफी मात्रा में खाना बनता है और कई बार शिकायतें भी आती है, कई बार एक्चुअल सिचुएशन भी होती है जहाँ फूड पॉइजनिंग के केसेस हो जाते हैं। तो इसको रेगुलेट करने के लिए डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर जारी करे हैं कि आप जो भी इस तरह के फंक्शन में खाना बनवाएंगे तो वो रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए या रजिस्टर्ड हलवाई कैटरर होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा तो उसमें फर्दर उसकी जिम्मेदारी भी हम तय कर पाएंगे और साथ ही जो हमारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट में उसको कार्यक्रम की डिटेल वो आयोजन स्थल कहाँ पर है, उसका आयोजक का क्या नाम है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ रहेगी, तो उसे निश्चित रूप से इस तरह के फूड पॉइजनिंग केसेस को हम मॉनिटर कर पाएंगे। यही हमारे इसके ऑर्डर को इस SOP को जारी करने के पीछे मंशा थी।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो आज प्रस्तावित कोटपुतली बहरोड जिलारा पावटारो दूरो रद्द वेग्यो है। बरसात और खराब मौसम

0: कारण इन्हें रद्द करयो गयो है। मुख्यमंत्री रो प्रागपुरा नगर पालिका माए राखीजा शहरी सेवा शिविर माए पहुंचनो और लाभार्थियों सु बंटल रो कार्यक्रम हो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग माथे 100 करोड़ रूपया सु 32 री लागत सु संरक्षण काम करवाया जावेला। केंद्र सरकार इन्हें उत्खनन स्थलों और विरासत परिसरों के विकास की डैश योजना माए भेड़ो करियो है। इनरे तहत ऐतिहासिक इमारत रो संरक्षण करियो जावेला, साथ ही म्यूजियम, वॉकवे, हिस्ट्री गैलरी, इंटरप्रिटेशन सेंटर और सैलानियों रे खातिर दूजी सुविधाएं विकसित करी जावेली। इनरे अलावा डिजिटल तकनीक और ऑडियो विजुअल रे जरिए मेवाड़ इतिहास ने बतायो जावेला। देश रो सबसे बड़ो वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली माए शुरू हुयो। भारत मंडपम माए हो रिया इन कार्यक्रम रो उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करयो। खबर नवीसा सु बंतल माए श्री सिंह कयो के भारत टेक्स अब एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन बन चुक्यो है और हर बरस इन माए प्रदर्शका और आगंतुकारी तादाद माए बढ़ोतरी वेरी है। वना कयो के न्यारा न्यारा देशा रे साथे करा गया मुक्त व्यापार समझौता रो भी वस्त्र क्षेत्र माए फायदो मिल रियो है।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए, अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: ऐ खबरां आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से सुन रहे हो। प्रदेश भर री सगली गर्भवती महिलावां रे स्वास्थ्य मानकारी सघन स्क्रीनिंग खातिर काले सु विशेष अभियान चलायो जावेला। 5 दिना ताई चलन वाला इन अभियान माए गर्भवती महिलावां री प्रसव पहला स्वास्थ्य जांच करी जावेली। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज जयपुर माए बैठक कर VC रे माध्यम सु सगला चिकित्सा अहलकारा ने इन बारा माए हुकुम दिया। माना कयो की आशा वर्कर ANM और CHO रे जरिए स्क्रीनिंग रो ओ काम करवायो जावेला। श्रीमती राठौड़ हर गर्भवती महिला री 4 गुणवत्तापूर्ण ANC जांच जरूरी रूप से कराने री बात कही। माना कयो की 32 जोखिम वाली गर्भावस्था खातिर अलग सु ट्रैकिंग सिस्टम बनायो जावेला। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर आज भीलवाड़ा पहुंचा, वना महात्मा गांधी सफाखाना परिसर रो जायजो लियो। इंद्र पाछे श्री खींसर मेडिकल कॉलेज री प्रिंसिपल और चिकित्सा अहलकारा रे साथे बैठक करी। मीडिया सु बंतल माए चिकित्सा मंत्री कयो कि जयपुर सु आई टीम भीलवाड़ा माए हुई प्रसूता मारी मौत रे कारणारी जांच शुरू कर दी है। वना कयो कि सरकार मात्र और शिशु स्वास्थ्य ने लिए गंभीर है।
2: हमारी जयपुर से एक टीम आई, उन्होंने जांच करी, लेकिन हमारे सीनियर लोग और राजस्थान के आए, अब मैं भी आया यहाँ पर। हमने सब चीजों की जांच की है और मैंने कुछ दस्तावेज की मांग करी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और हमने मंगाया और बांसवाड़ा में आज जा रहा हूँ।
0: चिकित्सा मंत्री इंद्र पाछे बांसवाड़ा खातिर रवाना हो गया। ध्यान जोग है कि हाल ही माए बांसवाड़ा माए न्यारा न्यारा कारणा सु कुछ एक प्रसूतावारी मौत हुई ही। स्थिति रो जायजो लेवन खातिर चिकित्सा मंत्री सफा खाना रो निरीक्षण करेला। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सु आज ऑस्ट्रेलिया रा उच्च स्तरीय राजनयिक पॉल मर्फी मुलाकात करी। इंद्र चालता दोनों भारत और ऑस्ट्रेलिया रे बीच शिक्षा और वाणिज्यिक संबंधा ने बढ़ाओ देवन माथे चर्चा करी। साथ ही राजस्थान माए उच्च शिक्षा आदिवासी संस्कृति संरक्षण और कृषि माए नवाचारा माथे भी खास रूप से चर्चा करी जी। बैठक माथे और ब्यूरो न्यूज डेस्क सु।
3: राज्यपाल श्री बागड़े री पहल माथे राजनयिक श्री मर्फी राजस्थान रा विश्वविद्यालय रे साथे ऑस्ट्रेलिया रा उच्च शैक्षिक कार्यक्रम रे एक्सचेंज री संभावनावा माथे काम करने पर सहमति जताई है। आवण वाला दिना माए राजस्थान रा विश्वविद्यालय रा कुलगुरु और ऑस्ट्रेलिया रा शिक्षाविदा तथा कुलपतिया रे साथे VC रे जरिए बढ़तर और चर्चा वेली। इनरे अलावा कम पानी और सूखे वातावरण माए कृषि सुजुड़ी पद्धति रे बारा माए भी राजस्थान ने फायदो दियो जावेला। बैठक में राजस्थान री आदिवासी धरोहर संरक्षण माथे भी खास चर्चा करी जी। न्यूज डेस्क सु सालेहा गाजी।
0: प्रदेश रा स्कूलों माए डिजिटल लर्निंग लैब री स्थापना करी जावेली। मुख्य सचिव V. श्रीनिवास आज जयपुर माए आज जानकारी दी। मुख्य

0: सचिव कहो कि इन सू पढ़े सिरिया ने अध्ययन माए सुविधा मिल सकेला। मुख्य सचिव पीएम श्री विद्यालय रा संस्था प्रधानारी राज्य स्तरीय वेबिनार माए बोल रिया हा। वना कहो कि आ लैब सू पढ़े सिरिया ने अध्ययन माए सहायता मिलेली। वना हर पीएम श्री स्कूल माए सुझाव पेटिका लगाने और सफलतारी कहानियां साझा करने री बात कही। वेबिनार पाछे मीडिया सू बंटल माए मुख्य सचिव कहो कि न्यारा न्यारा स्कूल रा नवाचार और सर्वोत्तम नीतियां ने दूजा स्कूल माए भी लागू करी जावेला।
1: राजस्थान में जो पीएम श्री स्कूल्स के माध्यम से जो एजुकेशन मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं, इनमें कई नेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस आज हमारे सामने आए हैं। ये हम भारत सरकार में सामने भी प्रस्तुत करेंगे और इसी क्रम में अन्य स्कूल्स को भी डेवलप करने के लिए सारे प्रयास। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसको हम लोग इसी क्रम में और भी वेबिनार आयोजित करेंगे, टॉप परफॉर्मर्स को राज्य के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि वो अपना चैलेंजेस और सक्सेसेस पूरा राज्य में बाकी सब लोग सुन के सीख सकें।
0: प्रदेश रा सगला 63,000 आंगनबाड़ी केंद्र माथे आज पीएएम बैठक राखी जी। महिला और बाल विकास महकमारी कानिसू आ बैठक हर महीनेरी मावस में राखी जावे है। समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS रा निदेशक वासुदेव मालावत राजधानी जयपुर में परियोजना जयपुर 2 रा मालवीय नगर सेक्टर 10 में आंगनबाड़ी केंद्र माथे राखी जी पीएएम मीटिंग रो जायजो करो। वना आंगनबाड़ी केंद्र माथे मौजूद कार्यकर्ताओं और अभिभावकों सू टावरारी गतिविधियां व्यवहार परिवर्तन और पोषण सू जुड़ी जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिया। केंद्र सरकार सोशल मीडिया माथे वायरल हो रिया उन वीडियो रो खंडन करियो है जिनमाए दावो करियो गयो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड रा ऑकलैंड माए एक कार्यक्रम रे चालता कहो हो कि भारत दुनिया रो दूजो सबसे बड़ो गोमांस उत्पादक देश है। पीआईबी री तथ्य जांच इकाई कहो है कि ओ दावो फर्जी है और प्रधानमंत्री एड़ो कोई बयान नहीं दियो है। रेलवे माए भूमि अधिग्रहण री प्रक्रिया रे प्रबंधन खातिर रेल भूमि पोर्टल लॉन्च करियो जावेला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली माए मीडिया ने आज जानकारी दी। वना बतायो कि अब कंटेनरा माए खाद ले जाई जा सकेला। बिजली संयंत्र सू पैदा होने वाली फ्लाइश एरस ने कंटेनरा माए भेजो जावेला। इन सू पर्यावरण प्रदूषण री भी रोकथाम मिली। श्री वैष्णव कंटेनर नीति रे तहत एकीकृत लाइसेंस प्रणाली री भी घोषणा करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई ने आकाशवाणी रे मन की बात कार्यक्रम में आपरा विचार साझा करेला। आ इन मासिक रेडियो कार्यक्रम भी 136वीं कड़ी वेली। इन खातिर श्रोता आपरा सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 माथे भेज सके है। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम रे मार्फत भी विचार भेजा जा सके है। ए सुझाव 24 जुलाई तक मंजूर करया जावेला। और आखिर माए खास खबर एक कर फिर सुनो। राजस्थान विधानसभा गठन रा 75 बरस रे मौके माथे काले सु अमृत महोत्सव री शुरुआत। साल भर के खास कार्यक्रम रो आयोजन वेला। राज्य माए शादी धार्मिक आयोजना और सार्वजनिक कार्यक्रम माए अबे केवल वैध लाइसेंस धारी हलवाई और कैटरर ही सेवा दे सकेला। प्रदेश भर री सगली गर्भवती महिलाओं रे स्वास्थ्य री सघन स्क्रीनिंग खातिर काले सु खास अभियान चलायो जावेला। हर प्रदेश रा सगला 63,000 आंगनबाड़ी केंद्र माथे भी अभिभावक कार्यकर्ता बैठक माए टावरा रे स्वास्थ्य और शिक्षा माथे चर्चा। इन रे साथ ही समाचार और बुलेटिन पूरो व्यो। नमस्कार।
2: मीटर 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: कार्यक्रम सुनने सगळ्या बहन भाई संदीप पारिकर
1: दीवान दान रत्नूरा गणान गणा राम राम।
0: दीवान भाई देखो अब काले चौमासु झुको है कि थोड़ सो लाग रहे कदी तो लागे भी बिरखा कोनी हुए फिर थोड़ी सी आस बंदे

0: कि भी बिरखा तो होगी बरसात जकी है अपने खेतों में भी
1: आवेगी। देखो बिल्कुल बिल्कुल संदीप भाई, आस अमर धन होया करे और अपन किसाना ने आस रही है कि बारिश होएला, लेकिन कदी कदी बखत माते हो जावे, कदी आगत बारिश हो जावे, कदी पाछत बारिश होए, लेकिन कुल मिलाकर किसान ने अपनी तैयारी रखनी चाहिए क्योंकि खरीफ री फसल री बुवाई अबार चाल रही है।
0: बिल्कुल, और एक चीज और है, आपा हर प्रकार जिका भी जुगाड़ बिठाना है, जुगत लगानी है, किसान के भी खेत में चोखों चोखों और बढ़िया बढ़िया ज्यादा ज्यादा नाच।
1: किसान तो वही चाहे के येन केन परकेन अपार खेत में ज्यादा ज्यादा उत्पादन हुए, ज्यादा ज्यादा आप इस साल में चोखो धान घरे ले जावा, बस यही है कि अपारो प्रयास है वो करनो चीजें।
0: लेकिन अब एक चीज बताओ दीवान भाई, आपने अठे की है माटी बाय क्षारीय खार है, तो बिन ने मैं यह सुनी है कि बिन ने थोड़ सुखी है कि फोरियो जा सके बिंग जिकी क्या कह रहे भौतिक अवस्था जिकी नहीं जा सके, तो इन मुझे अपन के काम कर लेना।
1: देखो संदीप इमें पहलो एक चीज है अपन ने ध्यान रखनी चीज है, अब लोग बाग हमेशा अपन चर्चा में ले वही किसान बयान के वही के सगणों पहला, तो यदि अपन ने खेत करनी है तो खेती करने वास्ते सगलों पहला किसान भाई अपन देखो प्रगतिशील किसान लोग भाई वे करी है, अपन सगलों पहला तो अपनी मिट्टी री जांच करवा, क्योंकि मिट्टी री जांच कराए बाद में अपने खेतरी किन प्रकार की प्रकृति है, खेतरी मिट्टी किन प्रकार की है, मिट्टी अपने अम्लीय है या मिट्टी क्षारीय है, है?
0: देखो आपने अम्लीय तो है कौन क्षारीय है, मतलब यह ठा पड़ जाए माटी री जांच कराया कि भी आपने माटी ने के उपाय की दरकार
1: है। अब भी है कि अपा बार बार एक ही खेती करा, बार बार एक ही खेती कर बो करा, जन बा मिट्टी री प्रकृति है, उम्र की मात्रा है, बा उपजाऊपन है वो खत्म हो जाए, लेकिन अपन आओ ध्यान रखो कि अबार मान लो अपनी मिट्टी क्षारीय है तो क्षारीय मिट्टी में कहीं कहीं अपा कर सक हाँ वीर वास्ते मिट्टी रे सुधार वास्ते कहीं कहीं चीज अपना सक हाँ, आ सगली अपन ने मिट्टी परीक्षण रे बाद में ही जिकी सिफारिश आवे नी भी सिफारिश पे ही संदीप भाई मोटा मोटी रूप में।
0: लेकिन देखो बस सिफारिश तो आप जांच करावा, माटी रो नमूनो लेवा हर बिन भेजा जद की बात है, लेकिन फौरी तौर पर जो कोई एक आपा काम कर सका बा है कि चोखी जिकी गोबर री खाद है या कंपोस्ट खाद है या कीचुआ खाद है नी है आपन काम में लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ए जिकी देसी खाद है भी खाद सू अपनी मिट्टी री उम्र सी मात्रा आप बढ़ा सका, जिकी गोबर री सड़ी हुई खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है जिकी आप बात करी यूं भी बता, और जिप्सम रो भी प्रयोग कर सका।
0: हाँ बात बताइए, जिप्सम रो इस्तेमाल जो को है बोक्षारी माटी ने
1: सबो ज्यादा, यदि अपारी खारी जमीन है तो खारी जमीन रहे, खारापन यदि अपने मीठापन में थोड़ो चेंज करनो बदला वास्ते अपन जिप्सम एक बहुत बड़ो उपाय है।
0: बिल्कुल, और इनके सागे सागे फसल चक्र जो को है
1: वो भी
0: अपन अपनानो चाहिए, दलहनी फसल जिकी है वे अपन काम में लेनी चाहिए, और खेत में फसल जिकी है बिंगो भी जो को भी कूटड़ो कचरो
1: माटी में आवे, और माटी जी उम्र सी माता पीएच जी वैज्ञानिक दृष्टि प्रगतिशील किसान वगैरह भाई पैमानो पीएच माप कर है वो ऊंचो हुए और फसल जिकी उत्पादन की क्षमता भी बढ़ जावे। तो देखो संदीप भाई बातचीत तो और भी आप रखने घनी है, लेकिन आप बड़े बातचीत करा ला पर गीतड़े री बारी है तो पहला भाई गीतड़ो जरूर सुना
0: सुनाओ
1: सुना अपा सीमा मिश्रा रे गाउड़ो गीत।

0: करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: तो साया तो हाँ संदेश, और संदेश में पहली आप गीत सुनो सीमा मिश्री आवाज, और अब दीवान भाई आगे की बातचीत।
4: देखो बातचीत तो बात बारिश हो री आस लगया सगला किसान भाई बैठा है खेती बाड़ी भी करेला, और खेती बाड़ी रे साथ साथ बिरखा आवता ही। देखो एक बात अपन हमेशा जहन में हुए के थोड़ो बारिश रे ऋतु में अपन ध्यान रखनो पड़े है, और ध्यान रखनो क्योंकि पहलो सुख निरोगी काया है, इस वास्ते अपन ध्यान भी रखनो घनो जरूरी है। तो मानसून री मौसम में कई ऐडी छोटी मोटी बीमारियां हुए जिकेरो बचाव ही उपचार होया करे। पहले ये बात ध्यान रखा तो अपने शरीर नुकसान भी नहीं हुए, टाबरा टिंगरा रो भी सगलों ध्यान रखता
3: सही बात है। देखो जब नमी हो अलसीड हो गए नहीं तो कई प्रकार का छोटा छोटा जीव जिनावर जका है वह पनपे, और बांसू फिर क्या है कि कई संक्रमण आ रहा रोग जका है वह भी हो जाए करे, डेंगू भी हो जावे, मलेरिया
4: मलेरिया डेंगू बिल्कुल चिकनगुनिया बहुत बहुत
3: बिल्कुल पानी जी साफ नहीं होनी
4: हाँ तो
3: टाइफाइड है जा इन प्रकार
4: डायरिया टाइप
3: है मोटे बुखार है सर्दी जुकाम है ये चीजें को
4: एलर्जी की
3: बीमारियां होना को
4: खतरो
3: बढ़ जाए।
4: बिल्कुल संदीप भाई देखो एलर्जिक बीमारियां है वे भी होने रे पूरा ज्यादा हो गए क्योंकि एलर्जिक जो है मौसम परिवर्तन होता ही, और साथ जो मच्छर जनित रोग है वे तो अपने इन इलाके में देखा ही यहाँ के मलेरिया डेंगू बुरी तरह पैर पसार ले और कभी कभी बहुत हालत खस्त हो जाए। इन खातर इन्होंने भी बचाव अपने मौसमी बीमारियां और बचाव भी मानसून जी बीमारियां है मानसून ऋतु में ध्यान रखना जरूरी
3: है। ध्यान रखने वाली बात जो आपका ही नहीं तो देखो दो चार छोटी छोटी बातें ध्यान रखा। पहली बात तो जकी ये बा पूरे साल ही काम आवे कि जब भी आप भोजन करा तो भोजन करने पहले साबुन सो की तरह हाथ साफ करा।
4: बिल्कुल
3: हाँ चाहे चौमासो हो चाहे
4: बारहो
3: कोई सो मौसम
4: बारहमासी ध्यान रखना जरूरी।
3: और दूसरी बात है जी खास तौर से आप चौमासे की बात कर रहे हैं तो कठे भी पानी जुको है वो भेड़ो नहीं होना चाहिए। भी सुफेर की है कि कई तरह की बीमारियां हुए माखियां हुए मच्छर हुए तो भी सु बचाव को तरीको वही है कि कठे भी आप गंदो पानी जुको है वो भेड़ो हो नहीं देवा। आजकल तो गाँव में भी कूलर चल रहा है तो कूलर है या कोई गमला है टायर पड़े है
4: टायर पड़े तो है
3: पानी
4: बिल्कुल खुली जगह है तो और भी बिल्कुल
3: और जब खुले में आप सो रहे हैं तो मच्छरदानी जकी है बात जरूर ले।
4: अरे एक गांव में कर संदीप भी देखा अटाड़ खान हो या करे जो को दावी जी चीज अपा कूड़ो कचरो अपा बाकड़े में नाक दा यार एक बाड़े में नाक दा कठी नाक दा तो आगती बाग ने कभी कभी छठा माते भी लोग बाग राके तो भी अटाड़ खाने में पानी और वो कचरो भेड़ोड़ो बीर में मच्छर पनपनेरा लारवा रा पूरा पूरा चांस रहे तो भी जगह भी अपा साफ सफाई भी रखा।
3: बिल्कुल और जे कभी मान लो कोई ताव चढ़ जाए उल्टी दस्त की शिकायत है तो फिर तुरंत आपा के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जो है पर जाके संपर्क करके आपने पूरी दवाई जी के बा
4: लेवा सगनों पहला जांच करावा और जांच के अनुसार अपन दवा पानी लेवा।
3: तो कहने मतलब वो है कि जो को चौमासो है इरो आनंद जो को है वो जदी लिए जा सके जद आप स्वच्छता रखा संतुलित आहार लेवा और रोग और कीड़ा मकोड़ा से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्तर पर आप थोड़ी साफ चेती रखा।
4: बिल्कुल संतुलित आहार ही बात करी बहुत बढ़िया लगी के संतुलित आहार ही चौमासे में आपा ने क्योंकि खाने पीने रो ध्यान पूरो सही रखनो जरूरी है क्योंकि चौमासे में कुपज होनो या खाने पीने रे ध्यान नहीं रखा तो कदी कदी आपा ने वो भी अपन फोड़ा गाल दे।
3: बिल्कुल और एक चीज और है चौमासा में हमेशा ताजा गर्म खानो खानो चाहिए
4: गर्म खानो
3: ठंडो बासी जो है
4: वो
3: नहीं खानो चाहिए
4: और बगत माते भी खानो चाहिए।
3: हाँ बगत माते तो देखो बगत माते तो जद खाई जे जद हाजमो सही हुआ है हाजमो सही हुआ है नहीं तो आप भी भूख लग जाए बगत माते।
4: अरे बगत माते खावाला तो पर हाजमो भी सही रह जाए।
3: हाँ देखो दोनों बात आपस में
4: मिलोड़ी
3: टाइम सर खाओगा तो भूख भी लागेगी
4: भूख भी लागेगी
3: बे टाइम का खाओगा तो फिर भूख को
4: भूख भी को लागे नहीं थाने रात रा भी

0: भोजन, पानी और आपदा प्रबंधन को बेहतर करना, खासकर उन समुदायों के लिए जो इसके जोखिमों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद भी कुछ नुकसान होना निश्चित है। यह एक डरावनी स्थिति है। अगर वर्तमान गतिविधि जारी रही तो इस सदी में वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ सकती है।
1: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु उपशमन और अनुकूलन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। हम स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर पेड़ों की कटाई रोककर और जंगल और मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक इलाकों को सुधार कर जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकते हैं। उपशमन का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करना। अनुकूलन का मतलब है इसके प्रभाव से बचने की तैयारी करना, जैसे कि

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: तो शायद तो है संदेश और संदेश पहली आप समंदर खां और सत्तार गायडो सत्तार खान रो गायडो गीत सुना। और अब देखो दीवान भाई जी आप पहली बात कर रहे खान पान की स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य संबंध में यहाँ तो कह रहे भी पहले सुख निरोगी का या
2: बिल्कुल सही,
1: लेकिन वो जो को सुख है नी निरोगी का या अपनी है जब तो आप थोड़ी सी सार संभाल कर लिया, लेकिन खेती खड़ आदमी होया थका खेती बाड़ी से जुड़ने से अपन आपने जी की माटी है नी इनके स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना जरूरी।
2: बिल्कुल सही बात है, आप पहला चर्चा करी ही कि शुरुआत में यदि आप अपारी खेतरी जी की जमीन है माटी है बीरी आप जांच पड़ताल नहीं करा ला तो जो उत्पादन है वो अपने फर्क आ जाए, क्योंकि एक फसल है बार बार बीर में बुआई राख सका और बा राखा ला तो बीर उमरसी मात्रा है बा उपजाऊपन है बा खत्म हो जाए, अपा बीर में खाद डाला नहीं है और दूसरी चीजा नहीं ध्यान रखा तो बात तो अपने दोहरा धरती है दोहरा धरती में माटी उठ जाए बेटे सब और बात दुर्बलता से अपारो खेती उपज भी में फर्क पड़ जाए।
1: बिल्कुल, और कहने मतलब वो है जब आप अपने माटी की जाँच करावानी तो बीमा आपने बहुत सारी चीजें उठा पड़े है, क्योंकि देखो आपने अठे यहाँ परिपाटी रही है परंपरा से रही है कि देसी खाद के तौर पर या तो कभी कोई एवड़ गांव में थोड़ा घो आप खाद दे इनके अलावा चूंकि आपने अठे सिंचाई का साधन को नहीं सगली जकी है बारानी खेती है सावनी आप लेवा बरसात से हुआ तो कोई उर्वरक वगैरह है बह घालने की भी आपने दरकार को नहीं हो। तो लगातार खेती तो होती जा रही है लेकिन फसल आप ले रहा हाँ तो माटी की जी की ताकत है बा धीरे धीरे धीरे धीरे कम होती जा
2: कम हो रही
1: है। अब कम होगी कितनी कम होगी और कौन कौन सी चीजें कम होगी हाँ सगली चीजें की जानकारी किसान ने होनी चाहिए। और बिंगो तरीको है कि आपा मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो को है वो बनवाओ।
2: बिल्कुल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड संदीप भाई एक एडो स्वास्थ्य कार्ड है बा अपनी खेतरी कुंडली है आपा कहवा नहीं के कुंडली अपारा जगह आप कोई डॉक्टर खन जावा डॉक्टर जांच बना पर और आपरी रिपोर्ट जांच रिपोर्ट तैयार कर पर और पछे बतावे के थारी किसी चीज की कमी है या कहीं रोग है। बिनी प्रकार अपारे खेत्र जी की मर्दा कार्ड है भी मर्दा रे कार्ड में जमीन रि जी की कुंडली है बा पूरी पूरी कुंडली है के आपरो खेत है आपरे खेत रे में या किसे किसे कोने में मतलब चारों कोना में अपन ध्यान है कि मर्दा स्वास्थ्य

0: घाट बनावा जन चारों कोणों आपा मिट्टी लेवा तो पूरे खेत री मिट्टी किन प्रकार की प्रकृति है, इमें उपजरी मात्रा कितनी है, पीएच मापक्रम कितो है, कहीं अमली है, क्षारीय है, किसी फल अपा फसल अपा उत्पादन ले सका, तो इन खातर इरी कुंडली रो रिपोर्ट रखनी, खेत री जमीन री रिपोर्ट रखनी भी घनी जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इनके देखो ज्यादा आपने परेशान होने की
0: परेशान नहीं, बिल्कुल
1: कई बार के है कि गांव में भी आए करे माटी की जांच करने के लिए।
0: आजकल तो देखो सेमिनार भी करे सरकार, प्रशासन गांव के संग शिविर भी लगा हुआ है, शिविर में अपार कृषि पर्यवेक्षक हुए है, तो भाई अपार गांव में भी अवेलेबल हो जीवे बटे मिल जीवे, आप भी बातचीत कर सका हाँ और तौर तरीका भी पूछ सका हाँ, और अपार माटी की जांच वास्ते बियाने भी कह सके अपार खेत है भी अपारी फसल उत्पादन वास्ते माटी की जांच करवा तो वे भी अपन सहायता दे सके।
1: बिल्कुल, और इस फायदों के देखो दीवान भाई जब माटी की जांच करावा ने तो भी सू आपने खेती की लागत भी कम हो है। भी देखी चीज कम है बा अपन घालनी है, देखी ज्यादा है बा घालनी को नहीं,
0: घालनी को नहीं,
1: तो लागत कम होगी।
0: बिल्कुल लागत कम होगी, अपन ने आ ध्यान पड़ जाए कि अपन के कदी कदी अपन ठाक होने में किसी चीज की कमी है तो
1: देखा देख बट फलाना किसान जेका है आ चीज घाल रहे हैं तो आपने आई टिका
0: भाई यूरिया टेक दो
1: तो यहाँ नहीं करना, जांच करा भी आप बीमार हुआ तो डॉक्टर की है कोई जांच लिखे तो जांच लिखे बिंग पचा दवाई भी या तो कोई नई दवाई चालू करे या बाजी की दवाई दे रही है बिंग डोज में फर्क करे
0: हाँ,
1: तो
0: कम बेसी
1: हाँ, तो ऐसी चीजें आपने माटी के स्वास्थ्य के संबंध में भी ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल आज बात है यार, आज अपन जद किसान भाया अपन ये चीज रूबेरू पड़ेला के अपा मिट्टी री जांच मृदा स्वास्थ्य कार्ड अपन जमीन री बना लवा, एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने बाद में 3-4 साल तक अपारे वो स्वास्थ्य कार्ड काम आ जावे। इन खातर प्रगतिशील किसान भाई है जिका किसान भाई है व्यापार खेती में जुड़ रहा है रुचि रख रहा है और अपन उत्पादन ज्यादा से ज्यादा लेना चाहे तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनानो ठीक रहेला।
1: बिल्कुल,
0: तो अब देखो संदीप भाई आगे भी थरते चर्चा तो देखो बहुत सारी ला और भी आगे करा तो अपा चला गीतरले री तरफ और एक परंपरागत गीत है मीठू सो गोविंद सिंह राठौड़ रो गावड़ो बहुत सुना
1: सुनो।

रोज कल मांगे दूध राबड़ी नानी गाली खीर रोज कल मांगे दूध राबड़ी नानी गाली खीर जीवन में जब कामे बेचो तरी दंगावर शीर रबाई की नमीन करक कामे बेटा तरक की नमीन करक कामे बेटा तरक।

कान मग खिचड़ी भाई नानी झाली जाळ जी कान मग खिचड़ी भाई नानी रे झाली जाळ जिमण में तो कानो के तो दाल में निकलो बाल भाई रे कानो गयो रूस लारे कबूतर सूत कानो गयो रूस लारे कबूतर सूत ये जी मोर राम जी ये जी मोर राम जी।

तुम्हारा लाल मैं दूध पिलाऊं गर्रम मर गर्रर कैसा न्यारा मना कुर्र चाला जोधपुर जी जोधपुर का कबूतर और भाई उड़ता रे फुर फुर मोटर बोली बुर थोड़ा बोला हुर लागर गिंड तुरा ये लागर गिंड तुरा मोटर पाछे कान्हो बोल

0: वेज कान्हो मांगो चूरो बाटी नानी घालो शीरो उधर नानी जी ने दिखो को नी शिराम पर वो जीरो जी नानी जी ने दिखो को नी शिराम पर वो जीरो कान्हो गयो भाग नानी का गई लाग कान्हो गयो भाग नानी का गई लाग जी कान्हो रे भाई नानी गोरे
1: कान्या मान्या कुर गोविंद सिंह राठौड़ परंपरा गीत मीठो सो अपना गीत सुनियो। और अब देखो संदीप भाई आप बातचीत करा जहां तक करता एक छोटी सी बात और कर ला के आज रे वक्त में अपा खेती बाड़ी सु जुड़ियोड़ा हाँ खेती बाड़ी साथ साथ गाँव में अपने स्वरोजगार रो भी काम मिल सके है। आज रे वक्त में यदि कोई प्रगतिशील किसान हुए तो छोटो छोटो आप रो धंधो कर भी आप स्वरोजगार उपलब्ध करा सके हैं क्योंकि खेती बाड़ी जरूर ही एक पशुपालन है। आप पशुपालन डेयरी उद्योग जरा छोटो धंधो आप बढ़िया सीख अच्छी तरह कर सका जिसू रोजगार अपने अपने परिवार में चार जना हाँ पांच जना हाँ तो पांचों मिल पर और धंधे में काम
2: भाई में देखो सका। मैं तो एक बात बताऊं कि परिवर्तन जक्का हुआ नहीं वहां में बहुत अच्छी चीजा भी हुआ। अब जक्का भी अपना परंपरागत काम काज है चाहे आप दिनो धप रख रहे या आपने खेत में बाजरी हो रही है आपनी गाय देसी है दूध दे रही है तो आज तकनीक के बल पर आप गांव में बैठा तक आपनी बा चीजा ने बेच सका क्योंकि आ चीजा की मांग। अब मैं था एक छोटो सा उदाहरण बताऊ एक कोई टाबरी बतायो मोबाइल पर कि बैठे थेपड़े भी कई बताओ गांव की चीज गांव में बैठे तक थेपड़े भी बेची जा सके एक चीज। दूसरी बात
1: अब एक बीच में एक और बात बताऊं थाने मारे गांव रा एक बुजुर्ग आदमी हा मैं क्या करता मैं जब छोटा छोटा मन आज भी यान बात याद करा जन मन अचुंब आवे के आवणा टाइम में थारो रेत नहीं हाँ बेचने वालों आदमी जरूरत है रेत भी बिक जाएगी
2: अरे मैं कहूँ मुड्डा हुआ है पिड्डा हुआ है यही बिकल। और एक बात देखिए मानसी हुए नहीं
1: तो
2: अब बताओ बिन्ने भी वास्तव में लेनिया लोग है
1: आज मूंज रो माचो

0: तो फिर बहुत बीकानेर में अपार शहर में बहुत जरूरी
1: बोली
0: बनानो है बिल्कुल सूत्र माचो
1: है अब
0: दरकार है बिल्कुल मांग
1: और दूसरी बात है थोड़ो सो होशियारी हो एक अंग्रेजी में सब के ट्रिकी होना पड़े
0: हाँ साफ से तो हाँ, कलाकारी
1: आप गांव में जका भी देसी उत्पाद है बारे गांव में रहता था दूर दराज दूसरे देश में भी बेच सको
0: दूसरे देश में बेच सको कस्बा में शहर में आप ले जा बेच सको बस वो आप एक तरह बाजार है मार्केट है बस अतो ही है कि आपने थोड़ी मेहनत करनी पड़ी और सही दिशा रो चयन करना पड़े
1: तो कहो मतलब है कि आंख नाक कान है खुला रखो अब धीरे धीरे जो को
0: समय आ रही है
1: समय है नी हाँ, वो फुर्यो है नी
0: हाँ,
1: वो गांव की चीजा का नहीं फुर्यो
0: विकास गांव वालों विकास वेला
1: है नी और आ चीजा की दरकार जका दूर दराज कोई शहर में बैठा है कोई देश विदेश में बस रहा है बन आ चीजा की याद आवे जी आपा थोड़ी देर पहली बात कर रहा अब आपा तो गांव में आ जद मां चीजा का स्वाद और मजा ले रहा
0: पर याद आवे भी शहर में बैठा जाने बिल्कुल
1: तो जका दूर दराज बैठा है और जका आ चीजा को कोड है बाकी मांग तो है ही
0: देखो कभी कभी अपन देखा अपन बूढ़ा बडेरा हरदम बट्टियों काटता रहे सूत्र सूतु लेकिन अपन काटता रहे लेकिन अब बात हो मैं काटता कहां वास्ते रहे लेकिन वो सूत कितो काम आवे माचो बढ़ा सका हाँ गांव में भी काम में ले सका और शहर में भी वो सूत्र माचे आज अपन है जरूरत है
1: भाई देखो अभी है दीवान भाई ए पुरानी बात गुटका जका है नी ऐ तो जितता लेगा बीता मीठा बीता कम है
0: कम है
1: घड़ी देखो
0: अब बात तो एकदम आपरे समय माते चाल रही है और समय बता रहा है के थे चर्चा वारो दौर है अठी करो आज समाप्त और सगड़ा लेवा सीख कार्यक्रम रोबकत हो रही है पूरो
1: तो संदीप पारिकर
0: दीवान दान रत्नुरा मोकड़ा मोकड़ा
1: राम
0: राम, राम सा

ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुन रहे थे ग्रामीण जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

सुगम संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोल अमारू चैनल से सुन रहे हैं। अभी आपने ललित कुमार व्यास की गाई हुई ये गजल सुनी और अब सुनिए अगली गजल। कलाकार हैं इंद्राणी रिजवी।

इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर रात के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आरंभ में सुनिए उदित नारायण, पामेला जैन और साथियों के स्वर में फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे का ये गीत।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: लता मंगेशकर को सुनिए, फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।

आशा भोंसले और मिंडू के स्वर में था ये गीत। फिल्म का नाम था ये रात फिर ना आएगी। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:30 होने को है। प्रस्तुत है लोक संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए अब्दुल गनी का गाया हुआ ये लोकगीत।

मारे पिउजी ने मेलू लिख परवानो मारे पिउजी ने मेलू लिख परवानो मारे पिउजी ने मेलू पिया एक बार आओ थे मिलवाने ओ पिया एक बार आओ थे मिलवाने जी पिया मारो मन ओ जी मारो मारो मन।

0: इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का यह कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके पश्चात अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान

0: शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों देखिए लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौते के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण

0: प्रदूषित न कर सके।
1: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
2: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
3: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258

फिल्म का नाम था निशुम और स्वर था अमित मिश्रा जोनिता गांधी का। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कुछ गजलें। सबसे पहले सुनिए गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की गाई हुई ये गजल।

0: ser Pablo ahora.
1: अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद कार्यक्रम के इस अंक के साथ मैं हूँ अशोक प्रेम। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मॉनसून आ तो गया है लेकिन पता नहीं कहाँ उसको कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया है। लेकिन आपको पता है कि हम हर नकारात्मक चीज़ के साथ में कुछ न कुछ सकारात्मकता जोड़ लेते हैं, तो क्यों ना आपको एक काम करना चाहिए, वो ये कि जब तक मानसून का दूसरा दौर शुरू हो यानी शहर में और शहर के आसपास बारिश शुरू हो, तब तक आप एक व्यवस्था करके रख लें, एक नहीं दो व्यवस्थाएं करके रख लें। पहला तो ये कि आसपास की किसी नर्सरी से या जहां कहीं भी पेड़ या पौधे बिक रहे हों, एक ऐसा पौधा खरीद कर ले आएं जिसके लिए आपको लगता हो कि आपके आसपास या आपके घर के आंगन में ही कुछ ऐसी ज़मीन है कि वो पेड़ वो पौधा जब एक दिन पेड़ का रूप ले लेगा उस दिन उसे वहाँ से हटाना नहीं पड़ेगा। ऐसा पौधा चुनिए जिसके लिए पर्याप्त भूमि आपके पास में हो, जिसकी पर्याप्त देखभाल आप कर सकें। और कहा जाता है कि बारिश में पौधे आसानी से लगते हैं, तो सरकार भी वृक्षारोपण के लिए इसी मौसम में ज़्यादा जोर देती है। वैसे तो वृक्षारोपण पूरे वर्ष होना चाहिए, अनवरत होना चाहिए, लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि वृक्षों को लगाना ही पर्याप्त नहीं है। पौधों को लगाना आसान है लेकिन मुश्किल काम जो है उनकी देखभाल करना है। और एक पौधे को ठीक वैसे जैसे आप अपने घर के बच्चे की देखभाल करते हैं वैसे ही कुछ सालों तक देखभाल करनी होती है। और जब वो पौधा जड़ पकड़ लेता है यानी वृक्ष बन जाता है, तब वो अपने आप यानी जैसे आपके घर का बच्चा जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तब आप उसे खुला छोड़ देते हैं, आज़ाद छोड़ देते हैं, उसकी चिंता से आप मुक्त हो जाते हैं। पौधों के साथ भी वैसा ही है, आपके बच्चे की तरह होते हैं। शुरू में कुछ साल तक आप उनकी पूरी देखभाल करते हैं और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तब फल देने का समय आ जाता है उनका। आप उनसे फल ले सकते हैं, छाया ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। और एक ऐसी चीज़ और है जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन उसका उपयोग बहुत है और वो है ऑक्सीजन। अगर आप अपने घर में इस तरह का पौधा लगा सकते हैं, घर के साथ बगल में ज़मीन है इतनी या आपके पास में कोई प्लॉट है तो लगाइए उसमें पौधा। सोचिए मत कि क्या होगा, एक दिन हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा। कोशिश करिए उसको थोड़ी सी प्लानिंग के साथ में काम करिए, इस तरह से लगाइए कि उसको कभी ना हटाना पड़े। अब मैंने तो ऐसे घर भी देखे हैं जिसके अंदर पेड़ लगा रहा अपनी जगह पर और पेड़ को निकलने के लिए रास्ता दे दिया गया, यानी कि पेड़ को ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए रास्ता दे दिया गया। अच्छा, एक बात और है कि अगर आप प्लॉट खरीदने का विचार कर रहे हैं, ज़मीन खरीदने का विचार कर रहे हैं ताकि घर बना सकें, तो कम से कम इतनी ज़मीन खरीदें कि उसमें एक दो पेड़ आप लगा सकें, एक दो पौधे आप लगा सकें जो बड़े हों तो उनको हटाना ना पड़े, उनके लिए घर में जगह हो। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए जगह की कमी के कारण हम पौधे नहीं लगा पाते हैं, ये बात समझ में आती है,

लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर भी जहाँ पर आवागमन बाधित नहीं होता वहाँ पर पौधे लगाए जा सकते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि हमने इसे हमारे कार्यक्रम में सबसे पहले लिया है। आप समझ रहे हैं ना इसके महत्व, आपकी पसंद कार्यक्रम में आपके पत्रों से भी पहले पेड़ पौधों की बातें हमने की है। अब ले लेते हैं आपके पत्रों की बात। सबसे पहला पत्र आया है गीत सुनने के लिए, हमें जिसने लिखा है, लिखने वाले हैं लालगढ़ से असगर अली पंजाबगीर, अनवर अली पंजाबगीर, मुमताज़, सोनू, टीना, वहीदा, सहीदा, ताहिरा, एम ए पंवार और खातून बेगम। मोमा सरबाज श्री डूंगरगढ़ से है मोहम्मद असकर पंवार, मोहम्मद अकबर पंवार, राबिया, मुन्नी, बरकत, हाजन, गुलजार, अजीज़ बर्क और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। और देखिए बीकानेर से ही श्रोताएँ शकीला बानो, समारा खान, मरियम बानो, मोहम्मद अजान, समीर खान, आबिदा बेगम और परिवार के बहुत सारे सदस्य। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सब सुनना चाहते हैं बहुत खूबसूरत गीत। फिल्म का नाम है खुद्दार और स्वर है किशोर कुमार का।

देखिए गीत कितना समीचीन सा है, माँ का प्यार, बहन का प्यार, दुल्हन का प्यार और प्यार के रूप हजार। बात कार्यक्रम की शुरुआत में वृक्षारोपण से हुई थी, पेड़ लगाने से हुई थी, और मैंने कहा था कि मानसून के इस ब्रेक में, इस अंतराल में हम सब लोग दो काम कर सकते हैं, पहला तो वृक्षारोपण का है और दूसरा मैं बताऊंगा भी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है, वो ये कि जैसे गीत में भी कहा गया कि जब आप पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ के साथ जो आपके आंगन में लगा हुआ है आपका एक आत्मिक रिश्ता बन जाता है, और जो जो ये पेड़ बड़ा होता है आपके बच्चों के साथ में आपको लगता है कि ये आपकी ही एक संतान है। और देखिए अभी देश में एक अभियान भी चल रहा है, एक वृक्ष माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, यानी आप अपनी माँ को भी ये समर्पित कर सकते हैं ये पेड़, और उसका पालन पोषण ठीक उसी तरह से करें जैसे अपने बच्चे की करते हैं या अपने माँ की देखभाल करते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक श्रृंखला बन जाए तो जो वृक्षों के लगाने की आवश्यकता इतनी महसूस हो रही है वो आवश्यकता कुछ हद तक पूरी हो जाएगी। दूसरा काम एक और कर सकते हैं जो मानसून के ब्रेक के दौरान हम लोग कर सकते हैं, वो ये है कि वर्षा जल के संचय का कोई उपाय कर लें। यूं तो देखिए नए घरों के निर्माण की मंजूरी आपको तभी मिलती है जब आपके घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा हुआ हो, लेकिन अगर घर पुराना बना हुआ है और उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो अभी भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। आप अपने मिस्त्री को बुलवाइए, है ना, मजदूर साथ में लाए बुलवाइए और उन्हें कहिए कि बारिश के पानी की व्यवस्था करनी है तो उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। छत का पानी जिस नाले के जरिए नीचे की तरफ उतरता है बस उसको, उसका संबंध जो है भूमिगत टैंक से कर दीजिए, और बीच में कोई छलनी या कुछ इस तरह की जाली लगा दीजिए जिससे कि कचरा अंदर न जाए, और बारिश से पहले घरों की छतों को, छत पे कचरा या मिट्टी है उसको साफ कर लीजिए। और यूं ये भी हो सकता है कि भूमिगत टैंक से जब आप पानी को दोबारा उपयोग करें तो आप उसको साफ़ करके आरओ के जरिए या उबाल कर जो से भी यूज़ करते हैं वैसे कर सकते हैं, तो पानी की बचत भी होगी और वर्षा जल का उपयोग भी हो जाएगा। और फिलहाल हम उपयोग करेंगे उन पत्रों का जो कि हमारे पास में आए हुए हैं गीत सुनने के लिए। शीतला गेट बीकानेर से मोहम्मद शफी खींची, मोहम्मद शरीफ खींची, मोहम्मद सुजैन खींची, मोहम्मद आजम खींची, अमजद अली खींची, अकमल हुसैन भियानी, कमला कॉलोनी बीकानेर से एडवोकेट सुभाष खत्री, और ये पत्र है ब्रह्मपुरी चौक से, और लिखने वाले हैं जीपी दवे, सुरेश दवे, गोपाल दवे और परिवार के सारे साथी। और देखिए सुभाषपुरा लालगढ़ बीकानेर से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और परिवार के

सारे सदस्य ये सब सुनना चाहते हैं। ये गीत कुमार सानू के स्वर में है और बरसात से ही संबंधित है। फिल्म का नाम है सर।

श्रोताओं, जिस देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक बारिश पर निर्भर हो, वहाँ के निवासियों को बारिश के पानी को सहेज कर रखना चाहिए, बरसात की धुन को सुनना चाहिए। वो धुन यही कहती है कि हमारी बूंदों को आप बचा के रखिए, ताकि वो भविष्य के अंदर काम में आ सके। और अगला पत्र आया है सादुल शहर से, ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही, लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ से हर्षिता, रामेश्वर कान्हा, सफलता कपिल, मीनाक्षी सत्यनारायण, मनोहरलाल मनोहर भाई और प्रभुलाल बागरी, ये सब सुनना चाहते हैं सोनू निगम का गाया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है आवारा पागल दीवाना।

रूपनगर हनुमानगढ़ टाउन से मोहम्मद रज्जाक, मोहम्मद जिसान, मोहम्मद इसरान, मोहम्मद इरफान और नसीम बानो, गांव दौलतपुरा श्रीगंगानगर से शिवलाल जी बेनीवाल, शांतिलाल बेनीवाल, मंजू मोहित और हेमंत, हनुमानगढ़ से सुल्तान सिंह तरार, कृष्ण, मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव और कांता, ये सब सुनना चाहते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है जाने मन, स्वर है सोनू निगम और

गोविंदगढ़ माझीवाला से श्री कानपुर राजस्थान में है। राजू टुटेजा, खुश दिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जिन्नू, मनु, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत वड़वाल, शिव सेठी, करणपुरी, स्माइल टुटेजा, इंदिरा विरहार, रायगढ़ से अकमर नूरजहां, डब्ल्यू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वलीउल्लाह नूरजहां, बुलंदशहर से बदरू अली अंसारी, फर्जू अली अंसारी, फर्जी अली अंसारी, लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिभा कौर, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, ज्योति, आकृति, जय, राहुल, विजेंद्र, फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, जीवन सिंह भूक और खेड़ा परिवार, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार है, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इन सब की फरमाइश पर आप भी सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम है दिल जले, स्वर है उदित नारायण का।

चौटाला रोड डबवाली से अंग्रेज सग्गू सुखविंदर कौर, रॉबिन और डिंपल, बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेंगी से भागवत वर्मा, गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती सेतिया और तनीश सेतिया। आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर मोहम्मद रफ़ी और साथियों को। फिल्म का नाम है फूल और पत्थर।

0: खूबसूरत हो तुम हाय हाय, कहीं तुमको मेरी नजर लग न जाए। छुपा लो मुझे अपने दिल में, छुपा लो मुझे।
1: ग्राम पजोनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंचोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक और आराध्या। शिवाजी नगर वड़ाली देश से वड़ाली देशमुख, राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिरा बाई सुनैना खोबरखेड़े। अजीत नगर मलोड से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह और सीएस बेगाना। इनकी पसंद पर सुनिए किशोर कुमार और विजेता पंडित को। फिल्म का नाम है कार थीफ।

इस गीत के साथ ही आज का आपकी पसंद कार्यक्रम का ये अंक समाप्त करने की अनुमति दें। अशोक प्रेम को नमस्कार। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में होंगे और उसके पश्चात अंग्रेजी में।

0: भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी।

हमारी आज की दूसरी सभा का प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। अगली सभा में कल सवेरे 5:53 पर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।